0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुप्रभात श्रोताओं, घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रेडियो चैनल RME का आज एक साल पूरा हो गया। कूल FM को रिब्रांड करके इसे RME का नाम और रूप दिया गया था। पूरे उत्साह के साथ आज इस रेडियो चैनल की टीम इस पहले साल की खुशियां मना रही है। अपने प्रसारण की शुरुआत के एक साल बाद राष्ट्रीय रेडियो चैनल इस खास अवसर को पूरे दिन खास कार्यक्रमों के साथ मना रहा है। वित्तीय साल 2026-2027 का बजट पेश किए जाने में अब

वह केवल 3 दिन बचे हैं। ऐसे में भूमि एवं आवास मंत्रालय ने समाप्त हो रहे वित्तीय साल का ब्यौरा पेश किया। शकील मोहम्मद ने इस दौरान किए गए कई महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डाला। इनमें योग्यता के लिए आय सीमा को बढ़ाना

0: दिया कि सरकार को जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने होंगे। उनके अनुसार राष्ट्रकोष, राजकोष और मौद्रिक नीतियां वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए। वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस जारी हैं। आज सुबह सऊदी अरब की टीम का सामना उरुग्वे के साथ हुआ। ये मैच ड्रॉ रहा 1-1। अभी के लिए न्यूजीलैंड की टीम ईरान से टकरा रही है और रात 11 बजे फ्रांस खेलेगा सेनेगल के खिलाफ। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस समझौते पर पूरी जानकारी जल्द ही आम की जाएगी। इस बीच शुक्रवार को जिनेवा में समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसी दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोला जाएगा। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। आज सुबह पूर्वी और दक्षिणी इलाकों तथा सेंट्रल प्लाटो पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद धूप खिली रहेगी। रात को पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं और बारिश की भी संभावना है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी और आज दोपहर बाद से 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज दोपहर बाद से पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों तथा दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 18 से 20 और अधिकतम 23 से 25 जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:43 पर और सूर्यास्त 5:38 पर होगा।
1: RM3 Radio.

ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

الحمد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنتم

सामीन, जैसे कि आगाज़ महफिल में हमने आपको बताया कि आज का ये प्रोग्राम ख़ास उन हुज्जाज कराम के नाम है जो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में हज ज़ियारत की सआदत हासिल करके मॉरिशस वापस आए हैं। हज के अरकान पूरा करने के बाद हुज्जाज कराम जब आखिरी मर्तबा काबा शरीफ जो मरकज़ ईमान है को अलविदा कहने के लिए तवाफ़ को जाते हैं तो उस वक्त दिल पारा पारा होता है, आंखों से आंसू जारी होते हैं क्योंकि पता नहीं कि फिर कब काबा शरीफ के दीदार का शर्फ हासिल हो और नज़र काबा शरीफ से नहीं हटती, बस यही दुआ जेरे लब होती है।

काबा शरीफ का तवाफ वो वाहिद इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ मक्कतुल मुकर्रमा में ही अदा की जा सकती है। खुश नसीब है वो जिनको अपने क़याम के दौरान भरपूर तवाफ करने का शर्फ हासिल हुआ।

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله। एक मुसलमान जब मक्कतुल मुकर्रमा में लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक की सदाएं बुलंद करता हुआ दाखिल होता है, अहराम पहने हुए वो काबतुल्लाह पर पहली नज़र, वो तवाफ़े खाना काबा, वो गिलाफ़े खाना काबा को आँखों से लगाना, वो हजरे अस्वद को बोसा देना, वो हतीम पाक में सजदे अदा करना, वो आब जमज़म से रूह और जिस्म को सहराब करना, वो हरम शरीफ और उसके मीनार, वो वहाँ गुजारे गए खूबसूरत लम्हात, भला वहाँ जाने वाला कोई मुसलमान कैसे भूल सकता है। वो कौन सा दिल है जो वहाँ जाने के लिए नहीं तड़पता। इस कलाम में हरम शरीफ में गुजारे हुए लम्हात की यादों को ताज़ा किया गया है। आइए हरम शरीफ की यादों में खोकर इस कलाम को समाअत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला बार बार मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। आमीन।

हुज्जाज कराम अरकान हज की अदाई के बाद मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते हैं और वहाँ पर रहमतों का ख़जाना झोली भर भर कर लूटते हैं। मदीना मुनव्वरा वो मुकद्दस शहर है जो अहले ईमान के दिलों की धड़कन और उनकी तमन्नाओं का मरकज़ है। यहाँ मस्जिद नबवी के आगोश में मुबारक अवकात लम्हात गुजार कर अब रुखसत हो रहे हैं। ये घड़ी, ये पल, ये जुदाई बहुत ही मुश्किल होती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिस्म का एक हिस्सा हमसे जुदा हो रहा है, हमसे अलग हो रहा है।

उन हुज्जाज कराम के नाम हैं जिन्हें हज बैतुल्ला का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत अनस रदिल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम जब सफ़र से वापस मदीना तशरीफ़ लाते, मदीने की दीवारों पर नज़र पड़ते ही सवारी को तेज़ फरमा देते थे। इससे बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की मदीने से मोहब्बत और उल्फत ज़ाहिर है। अहले ईमान 40 नमाज यहाँ कायम करके जब गुम्बद खजरा के सामने आखिरी सलाम के लिए हाजिर होते हैं तो आँखों से जारी आंसू दिल का हाल बयान करते हैं, और यकीनन ये वो दरबार है जहाँ खामोशी भी सदा

मस्जिद नबवी की वो मीनार, वो सब्ज़ गुंबद, मस्जिद के अंदर रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करना, मेहराब नबवी शरीफ के सामने दस्ते दुआ दराज करना, हर एक अमल आंखों के सामने गर्दिश कर रहा है। मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन में नफल की अदायगी, जन्नतुल बकी कब्रस्तान की ज़ियारत, जबल थोर, जबल नूर, जबल उहद के नज़ारे, अलगरज वो तमाम मनाजिर आंखों के सामने हैं और दिल अफसुरदा है। और बस यही शिकायत है कि हम मदीने से अल्लाह

सामिन हुज्जते कराम के नाम आज की ये महफिल रही, उम्मीद है कि आपने इसे ज़रूर पसंद फरमाया और यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम हुज्जते कराम के हज को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हम सब को बार बार मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा का दीदार नसीब फरमाए। आमीन फ़ुम्मा आमीन। अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।

छोटो टॉयलेट ट्रिविया प्रश्न उक सिनेमा चित्रीकरण पूर्तैन तरुवात कूडा पनी कोनसागुतुंदा समाधानं अवुनंडी एडिटिंग डबिंग साउंड डिजाइन प्रमोशन इंका एन्नो दशलु उंटाई सिनेमा पूर्तवडं अंटे केवलं शूटिंग मूगियडं कादु।

भक्ति में शक्ति। मंगलवार 16 जून घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:45 हो चुके हैं। रेडियो मनोरंजन पर हम आ चुके हैं आप सभी का साथ देने के लिए भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं और ईश्वर की अपार कृपा आपके जीवन पर बनी है। जी हाँ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम का हम आरंभ करने जा रहे हैं। अभी से लेकर दिन के 11:30 तक चलेगा यह भक्ति गीतों का कार्यक्रम। और कहते हैं ना कि ईश्वर के प्रति जो भक्ति है हमारे हृदय को, हमारे जीवन को शक्ति से भर देती है। और ये शक्ति इतनी सकारात्मक होती है, इतनी पॉजिटिव होती है कि ये जीवन के हर एक पड़ाव को पार करने में हमारे लिए सहायता प्रदान करती है। हर एक मुश्किल का सामना हम कर पाते हैं, हर नकारात्मकता को डट कर हम दूर कर पाते हैं ताकि हमारा भी जीवन जो है सकारात्मकता से सदा भरा रहे। तो चलिए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं भगवान गणेश का नाम लेते हुए।

चलिए भगवान गणेश के नाम से हमने कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया और कहते हैं ना कि भगवान गणेश जो है सभी विघ्नों को दूर करते हैं और वैसे ही जीवन में यदि हम कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए

सकारात्मकता होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सच्चे हृदय से, एक सच्चे मन से जब हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो अंत अपने आप में अच्छा हो ही जाता है। कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, और कोई कोई ये भी कहता है कि अंत भला तो सब भला। तो हर एक का देखने का जो है दृष्टिकोण होता है, क्योंकि जिस तरह की हमारी परवरिश हुई होती है, जिस तरह के परिवेश में हम पलते बढ़ते हैं, उसका बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। उसी तरीके से किस तरह के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ हमने बचपन में सीखा है हमारी सोच और समझ वहीं तक सीमित है। आगे बढ़ते बढ़ते जीवन में हम अलग अलग प्रकार के, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग क्षेत्र से लोगों से मिलते हैं, उनसे उनके जीवन के अनुभव के बारे में जानते हैं, और इन्हीं सब के चलते हमारा भी जीवन जो है एक अलग दिशा लेने लगता है। और कभी कभार ऐसा होता है, कहते हैं ना कि आप सुनिए सबकी सलाह, सबकी ले, लेकिन करिए वो जो आपको लगता है सही है। और जो भी आप कुछ कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है कि आपके किसी भी कार्य से, आपके किसी भी कर्म से, आपके किसी भी वाणी से कभी किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, कभी किसी का कोई नुकसान ना हो। चलिए, मंगलवार का दिन है, हनुमान चालीसा के साथ कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं।

की तो पूजा अर्चना होती ही है और भगवान राम की कृपा जिस पर हो उन्हें तो हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिलता है। और भगवान राम जिस तरह से धरती पर आए थे अपने कर्तव्य को उन्हें भी निभाना पड़ा था और शिव जी का रूप हनुमान जी भी आए थे और किस तरह से भगवान राम के प्रति एक निष्ठापूर्वक जो है वो अपने आप को जो है समर्पित करते हुए उनके जीवन के हर एक कार्य में उनकी सहायता करते थे, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को बनाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अपने लिए तो हर कोई करता है ना, मुझे मेरे परिवार का पालन पोषण करना है, मुझे मेरे परिवार को देखना है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना है, लेकिन एक समय ऐसा आता है हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमें समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य होना बहुत ज़रूरी होता है। सामाजिक स्तर पर हमें भी जब हमें समाज से ले रहे हैं तो बदले में देना भी हमें चाहिए।

भक्ति में शक्ति। तो चलिए यहाँ पर कहते हैं ना कि ईश्वर की शरण में हर कोई जाता है। ईश्वर की शरण में जब भी हम जाते हैं, कोई ना कोई प्रार्थना लेकर जाते हैं, कोई ना कोई हमारे दिल की इच्छा होती है उसे लेकर जाते हैं। लेकिन कभी बस ईश्वर की शरण में ऐसे ही चले जाना चाहिए, ऐसे ही चले जाना चाहिए उस ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि आज हम जो भी है, जहाँ भी है, कहीं ना कहीं ईश्वर की ही देन है।

0: शक्ति।
1: तो श्रोताओ, कहते हैं ना कि हम जीवन में कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, ईश्वर का नाम लेते रहने से हमें पता ही नहीं चलता है कि कब जो है समय व्यतीत हो गया या कब अच्छे से हमने उस समय को व्यतीत किया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कब हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी और कब प्रोग्राम समाप्त होने को चला पता ही नहीं चला। चले इसी के साथ जाते जाते हनुमान जी की आरती के साथ आज के कार्यक्रम का समापन हम करते हैं। 11:30 बजे आप चाइनीज भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे जिनकी प्रस्तुति में। तो अगली भेंट तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को। हमारी ओर से ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर जुड़े रहिएगा, साथ देते रहिएगा। आप सभी के साथ के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आइए सुनते हैं समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रेडियो चैनल RMA को आज एक साल पूरा हो गया है। कूल FM को रिब्रांड करके इसे RMA का नाम दिया गया। पूरे उत्साह के साथ आज इस रेडियो चैनल की टीम इस पहले साल की खुशियां मना रही है। अपने प्रसारण की शुरुआत से एक साल बाद राष्ट्रीय रेडियो चैनल इस खास अवसर को पूरे दिन खास कार्यक्रमों के साथ मना रहा है। वित्तीय साल 2026-2027 का बजट पेश किए जाने में अब केवल 3 दिन बाकी हैं। ऐसे में भूमि एवं आवास मंत्रालय ने समाप्त हो रहे वित्तीय साल का ब्यौरा पेश किया। मंत्री शकील मोहम्मद ने इस दौरान किए गए कई महत्वपूर्ण सुधारों पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्रीय बजट 2026-2027 की प्रस्तुति नज़दीक और मंत्री अरविंद बुलेल ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित एक प्रेस सम्मेलन लगाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने होंगे। उनके अनुसार राजकोष और मुद्रा नीतियाँ वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई फैसले लिए जाएंगे। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस का दौर जारी है। आज सुबह सऊदी अरब की टीम का सामना उरुग्वे की टीम से हुआ। ये मैच ड्रॉ रहा 1-1। न्यूजीलैंड की टीम ईरान से आज सुबह टकराई, स्कोर रहा 2-2 ड्रॉ। और आज रात 11 बजे फ्रांस खेलेगा सेनेगल के खिलाफ। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस समझौते पर पूरी जानकारी जल्द ही आम की जाएगी। इस बीच अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी समझौते के कुछ प्रमुख पहलुओं की जानकारी दी। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। स्कूल लेन नुवेल फ्रांस में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के श्री बेनी प्रसाद बखोरी जो गुरुजी रोहित के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके मकान स्कूल लेन नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गामजिन लेन नुवेल फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: You're listening to RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: 12:08 हो चुके हैं दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ पूनम। नमस्ते आदाब एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोपहर का समय है और थोड़ा सा काम का इस टाइम होता है और थोड़ा सा आराम का, तो सोचो अगर इसमें कुछ प्यारे से गाने जोड़ दिए जाएं तो कैसा रहेगा। अगर आपकी पसंद के कोई गाने आप सुनना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 5250600 पर, और अगर कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 4028070 पर, जहां पर बता सकते हैं आप अपनी पसंद के गाने और हम चलाएंगे यहां से, यानी कि रेडियो रंजन से। तो ये गाने आपके लिए आपकी पसंद के चलाते हैं हम। अब ये एंजॉय कीजिए आपका प्यारा सा गाना आन मिलो सजना मूवी से।
2: RM3 रेडियो।

0: सफर
1: 12:23 हो चुके हैं और आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में, क्या गाना था। आप जानते हैं कि एक बार महेंद्र कपूर साहब मोहम्मद रफ़ी साहब के घर चले गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, क्या आप मेरे गुरु बन सकते हो, क्या आप मुझे गाना गाना सिखा सकते हो, मुझे जितनी मुर्कियाँ होती हैं, जिस तरीके से रियाज़ किया जाता है, जिस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है सांसों की, मुझे प्लीज़ सिखाओ। और उन्होंने बोला कि क्यों नहीं, इतना अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं क्यों नहीं सिखाऊंगा। और उन्होंने फिर ये जिम्मा अपने सर पर लिया और महेंद्र कपूर को सिखाना शुरू किया। और बिलीव मी कि दोनों की आवाज़ ऐसी हुई और दोनों की जो बातें थी, दोनों का स्टाइल था, दोनों का मतलब हाई पिच पे गाना अलग ही बात हो गई। और उसके बाद मिले हमें ऐसे दो यादगार बड़े कलाकार, एक तो मोहम्मद रफ़ी साहब थे ही पर उन्होंने अपना शागिर्द को भी ऐसा बनाया, और इस तरीके से हमारे को मिले महेंद्र कपूर, और जिन्होंने गाया तो क्या गाया। कहते हैं कि अगर बड़ी आवाज़ कोई खींच सकता था तो वो थे सिर्फ महेंद्र कपूर साहब। तो चलिए भाई, ये गानों का सिलसिला यहीं पर चलेगा आपके साथ, आप ही के प्रोग्राम सुहाना सफ़र के साथ। साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस समय राधा जी, जो कि अब राधा बाल गोविंद जी, जिनको अपनी सारी सहेलियों और अपने पूरे परिवार को एक प्यारा सा गाना सुनाना है। और ये नेक्स्ट गाना जो है वो मोहम्मद रफ़ी साहब की ही आवाज़ में मिलेगा आपको, और जो उनकी पसंद का है। तो इन्जॉय कीजिए आपका प्यारा सा गाना।
2: RM3 Radio.

12:35 हो चुके हैं और आज है मंगलवार का दिन यानी कि 16 जून। भाई ये वाला टाइम जो होता है ना बहुत ही पीसफुल होना चाहिए। यहाँ पर सुबह से आप लोग इधर उधर काम कर रहे होते हैं, भागम भाग चल रही होती है घर परिवार की बच्चों की, पर ये टाइम थोड़ा सा जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए क्योंकि अभी आपको पूरे दिन और सफ़र तय करना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो इन्जॉय करते हैं आपके प्यार के आपके पसंद के गाने हमारे साथ। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजन रघुपत जी जो कि लंदन से हैं और वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं आपके आवाज़ को ढूंढ रहा था, पर मैं आपको ये बोलती हूँ सर हम आपके मैसेज को ढूंढ रहे होते हैं और हम भी कहते हैं कि हाँ हमारे मित्र कहाँ पर हैं। तो थैंक यू आपके यहाँ आने का और आपके मैसेज करने का, और मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए। अगर आपके वहाँ पर रात है तो आपकी शाम या रात बहुत ही अच्छी और सुहानी रहे। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और उसके साथ में ही है सायरा बानो जी जो कि एक प्यारा सा गाना अपने हस्बैंड अब्दुल जी को सुनाना चाहते हैं और उन्हें कह रहे हैं कि ले चल मुझे कहीं पर भी पर मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। उसके साथ में ही हमारे साथ हैं सुनीता मौसी जो कि काठरपोन से हैं और वो एक गाना सुनाना चाहती है अपने बच्चे को, मतलब यानी कि उनके किसे क्या बोल सकते हैं, बहन के बेटे को या भाई के बेटे को, आई डोंट नो, नवीन नंद जी को। और उनको बोल रहे हैं कि हमारी पूरी गुरचरण फैमिली, पसेनू फैमिली एंड नंद फैमिली उनको बधाई दे रही है और प्रार्थना कर रही है कि हमेशा लंबी उम्र पाओ और हमेशा खुश रहो। यही सबसे बड़ी बात होती है, जब कोई बड़ा इंसान कहता है कि खुश रहो तो सच में उसकी जो आशाएँ होती हैं और जो उसकी ब्लेसिंग्स होती हैं उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो हम भी यही बोलेंगे सर नवीन सर आप हमेशा खुश रहें, इंजॉय करें आप अपना बर्थडे, शाम को अपनी मौसी को या जिस वक्त भी आपको समय मिले अपनी मौसी को जो कि माँ समान होती है, कहते हैं मौसी में ममा में दो दो मामा होते हैं और मामा में भी, तो कहते हैं कि प्यार बहुत करते हैं, बुआएँ भी बहुत प्यार करती हैं, सभी प्यार करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ रिश्ते जो बिल्कुल आसपास होने चाहिए और आपको याद कर रहे हैं, तो बस उन्हें जब भी समय मिले कॉल कीजिएगा। उसके साथ में हमारे साथ फूलवंती जी जुड़ी हुई हैं और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश कर रही हैं और उन सभी लिसनर्स को बस बोल रही हैं थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, अच्छा खाओ, आराम से सो, रेस्ट करो, जो भी उनकी उम्र के लोग हैं। तो मैं तो यही कहूँगी आप सब खुश रहो, इन्जॉय करो, ये गाना सुनो बहुत ही प्यारा, पसंद का, आपकी पसंद का। RM3 Radio.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: 12:46 हो चुके हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत सारे लोग, और सबसे स्पेशली सबको ये प्रोग्राम इसलिए इतना पसंद आ रहा है क्योंकि हम चला रहे हैं आपकी पसंद के गाने, और शायद 70s, 60s और कह सकते हैं 80s को भी हम ऐड करेंगे और 90s को भी आखिरी में थोड़ा सा ऐड करेंगे अगर हो सकेगा तो, पर हम चलाएंगे आज पुराने गाने। तो चलिए बात करते हैं, बहुत सारे हम संगीतकारों की बात करते हैं या ऐसे सिंगर्स की बात करते हैं जिन्होंने दुनिया में आए और बहुत कुछ सीखा, पर हमारे बीच में एक ऐसे संगीतकार रहे हैं जिनका नाम था रविंद्र जैन, जिन्होंने जिनको अपनी आंखों से तो नहीं दिखा पर उन्होंने अपने म्यूजिक से दुनिया को दिखा दिया कि भाई क्या गाने बनाए उन्होंने, हर जगह पे उनकी वाहवाह तो हुई, और कहते हैं उन्होंने हर काम जो भी किया संगीत में बहुत ही आला दर्जे का किया, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश यही थी कि वो बहुत अच्छा काम करें और दुनिया को ऐसा कुछ देकर जाएं जिससे कि उन लोग याद रखें। और सच में उन्होंने रामायण में जो गाने गाए या आप कह सकते हैं अखियों के झरोकों से मूवी में जो गाए वो नॉर्मली शायद कोई और संगीतकार या कोई गीतकार नहीं गा सकता था। चलिए इंजॉय करते हैं ये वाला गाना जो कि पसंद किया गया है कहाँ कैसे भाई यूएसए से ललित जी ने, और कह रहे हैं कि ये वाला गाना उन्हें बहुत पसंद है, तो प्लीज़ चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे आपके पसंद के गाने चलाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर में जुड़ेंगे हम संक्षिप्त समाचारों के साथ, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे आपके गानों को।
2: RM3 रेडियो,

0: The Musty.
1: आइए सुनते हैं समाचार सुमैरा अकबर अली के साथ। नमस्कार और आदाब।
2: नमस्कार और आदाब। ईरान और अमेरिका के बीच सुलह, एक 109 दिनों की जंग के बाद आखिरकार दुनियावी भलाई और आपसी अमन की खातिर दोनों मुल्कों ने जंगबंदी पर मंजूरी जताई है। इस शुक्रवार से आबी रहगुजर आबनाए हॉर्मुज को दोबारा खोला जाएगा, जहां से सभी कश्तियां गुजर सकेंगी। समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दस्तखत किए गए हैं और इस फैसले से पेट्रोल के दामों में गिरावट आई है, लेकिन स्थिति के सामान्य तक लौटने में कुछ महीने लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुताबिक ऊर्जा की सप्लाई चेन पर जो असरात पड़े हैं वो इतनी तेजी से नहीं मिटाए जा सकते। पुराने वित्त मंत्री रंगनादेन पडियाची और पुराने श्रम मंत्री सुरेश कालीचंद फिलहाल रिजवी के ट्राइंगल स्क्वायर में हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की तहकीकात के सिलसिले में उनसे पूछताछ जारी है। ये खबर है कि दोनों से पेट्रोली पैदावारों को लेकर 30 बिलियन रुपए के सिलसिले में जाँच की जा रही है। नगर पालिकाओं के नए मुंतखब मेयरों और डिप्टी मेयरों के साथ आज प्रांतीय प्रशासन मंत्री राजीव वुचित ने एक खास मुलाकात की। शहरों के हालात, शहरियों की सहूलतों और दीगर परियोजनाओं पर गौर किया गया। नए अधिकारियों ने अपने अपने मकसदों और कामों पर रोशनी डाली। साथ में उन्होंने संचालन में पेश मुश्किलात का मुद्दा भी उठाया। और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहली बार स्लोवाकिया के दौरे पर गए हैं। फ्रांस में फलदायक मुलाकातों के बाद उन्होंने भारत और स्लोवाकिया के रिश्तों को उरूज देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में ये विशेष दौरा शुरू किया। स्लोवाक गणराज्य की तरफ से उन्हें वहां का सबसे इम्तियाज एजाज यानी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। स्कूल लेन नोवेल फ्रांस में 87 साल के 87 years old श्री बेनी प्रसाद बुकोरी, श्री बेनी प्रसाद बुकोरी जो गुरुजी रोहित के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज तीन बजे इनके घर स्कूल लेन नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गामजिन लेन नोवेल फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। सीनिवासन रोड डर्निंगम थ्रियोली में 64 साल के 64 years old श्री उमानंद लक्ष्मण, जो मनंद पेप्सी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज शाम चार बजे इनकी पत्नी अमृता लक्ष्मण के घर सीनिवासन रोड डर्निंगम थ्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टेमिनस थ्रियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
3: Continuous music.

0: सुहाना सफर।
1: 1:12 हो चुके हैं दोस्तों, और कई लोग इस समय शाम की प्लानिंग कर रहे होंगे, क्या बनाना है, कहाँ जाना है, और कुछ लोग तो बस ये सोच रहे होंगे अरे कब आराम मिलेगा, थोड़ा सा तो कोई आराम दे दो। और ये गाने होते हैं ना, ये सच में बहुत काम करते हैं, और ये आराम का काम करते हैं। और अगर आपको आराम चाहिए तो इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है, RM3 रेडियो मनोरंजन आपके लिए वो सारे गाने लेकर आता है जो आपके दिमाग को, दिल को सुकून देते हैं। तो चलिए भैया, हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं उषा जी ब्रह्म स्थान से, और इन्जॉय कर रही हैं प्रोग्राम को, और साथ में ही एक प्यारे से गाने की फरमाइश की है, तो बिल्कुल हम चलाने वाले हैं। शारदा जी जुड़ी हुई हैं साथ में, सभी सुंदर फैमिली के लिए एक गाना सुनाना चाहती हैं, और हम चलाने वाले हैं आपकी पसंद का। सूरज शर्मा साजदा जी भी हैं, और उन्होंने भी अपनी पसंद का गाना मांगा है, पर सबको ये कहा है कि दोपहर में अगर आप कोई दही खा सकते हो, या कोई फ्रूट खा सकते हो, या लेमन जूस पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, कुछ भी तो ज़रूर पीजिएगा, खाइएगा, क्योंकि ये टाइम जो होता है आपकी पसंद का, और आपके टाइम जो होता है ना, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी हेल्थ से रिलेटेड। तो चलिए भाई, बहुत अच्छी टिप दी है आपने सूरज जी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके साथ में एक और प्यारी सी हमारी दोस्त जुड़ी हुई हैं, अनीता जी फ्लिकॉफ लाख से, और वो भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं। तो हम एक एक करके चलाएंगे आपके पसंद के गाने, पर आपको ये बोलेंगे कि भाई खाते रहो, पीते रहो, मुस्कुराते रहो, और मजे में रहो। ये है गाना आपकी पसंद का, ओ मेरे सोना।
2: RM3 रेडियो।

0: खाना सफर खाना सफर
1: 1:30 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं सुहाना सफ़र के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। तो ये प्रोग्राम जो है ना बहुत ही अच्छा है, पर बाहर की जो धूप है ना बहुत तेज़ है और कहते हैं कि ये धूप बहुत ही अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए, पर अगर आपने सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक की धूप ली, यानी कि आधा घंटा आप बाहर बैठे, थोड़ा सा पौधों को पानी दे दो, थोड़ा सा फूल देख लो और थोड़ा सा बाहर आकाश को देख लो, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगी। जो मैं कहती हूँ जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ये धूप लेनी चाहिए अपने घुटनों में, थोड़ी सी कमर पे, और थोड़ा सा बाहर बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरे दिन तो आपने काम करना ही है, वहाँ पर तो हम किसी को रोक नहीं सकते, पर 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकाला कीजिए। और ये वाली जो धूप है इसमें तो नहीं आपको बैठना चाहिए, पर हाँ अगर 4 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक थोड़ी देर धूप में बैठो, उस टाइम चाय पियो, अगर वो भी अंदर मत, कमरे के अंदर मत पीजिए, थोड़ा सा बाहर आके पीजिए, तो देखिएगा आपकी जो चेहरा है बहुत ही ग्लोइंग हो जाएगा, आपके शरीर में बहुत ही कहते हैं ना खिंचाव थोड़ा सा कम होगा, खिलावट आएगी, और जैसे फूल खिलते हैं वैसे आपका शरीर भी खिलेगा और अच्छा होगा। तो आपकी जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं, इसे जरूर करते रहना चाहिए। इसलिए हम आपको याद दिलाते रहते हैं बार बार रेडियो से कि थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा फ्रूट खाइए, ये टाइम में बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है, और फ्रेश फूड खाइए, घर पर बनाइए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए बाहर का खाना। तो चलिए भैया हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई है देवयानी जी, जो कि एक प्यारा सा गाना पूरा

0: और पश्चिम मूवी से कोई भी गाना, उन्होंने कहा कि कोई भी गाना चलाएगा पर थोड़ा सा मज़ेदार चलाएगा। तो चलो हमने भी चूज़ कर लिया अपनी पसंद का आपके लिए एक प्यारा सा गाना। तो उमा जी साथ में दे रही हैं हमारे क्यूपिप से, वो भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही है। थैंक यू उमा जी आपके मैसेजेस। मैं तो सभी को कहती हूँ कि आप सबके मैसेजेस होते हैं इस प्रोग्राम की जान होते हैं, और ये जान हमारे को तभी आती है जब आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं। साथ में अनीता जी जुड़ी हुई हैं फ्लिक ऑफ फ्लैक्स से, और वो अपनी पूरी सहेलियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इंदिरा, श्यामा, मीरा, सिनंद, कविराज, साधना, मिलानी, कविता के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं, और कह रही हैं रेडियो मनोरंजन को थैंक यू सो मच ये प्यारे प्यारे से गाना सुनाने के लिए। तो चलिए भाई इंजॉय करते हैं आपके गाने और बात करते हैं थोड़े दिन में फिर से।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: 1:44 हो चुके हैं और आपने बोला कि दोबारा से गाना क्यों से चल गया, तो भाई देखिए हमारे पास भी बहुत सारे प्यारे प्यारे से बच्चे आते हैं, ट्रेनीज आते हैं और वो भी हमें बताते हैं कि कैसे, तो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, ये इग्नोर कर दिया करो। तो चलिए, ये बहुत सारे गानों की फरमाइश तो आई है और बहुत का समय कम है, पर हम फिर भी आपकी पसंद के गाने चला रहे हैं यहाँ पर। तो किसी ने कहा कि सुरेश वाडकर की आवाज़ में अगर आप गोरों की ना कालों की गाना चला सकते हैं तो ज़रूर चलाइएगा, क्योंकि मिथुन दा का बर्थडे है। तो चलिए भाई ये वाला गाना सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं, क्योंकि मस्ती का टाइम है, थोड़ा सा हंस लिया करो, मुस्कुरा लिया करो और छोटी छोटी बातों को भुला दिया करो। हम भी आपके साथ ही हैं, आप ही के साथ, प्यारे से गाने के साथ इन्जॉय कीजिए ये वाला गाना।
2: RM3 रेडियो।

0: RM3 Radio.
1: हेमंदा की आवाज सुनकर मुझे यूं लगता था कि जैसे कोई साधु मंदिर में बैठा भजन गा रहा हो। अच्छे गायक तो वो थे ही, उतने ही अच्छे वो म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। उनके संगीत में रविंद्र संगीत, आसाम और बंगाल के लोक संगीत के साथ साथ आधुनिक और शास्त्रीय संगीत का मिलाप भी था।

0: खाना सफर।
1: 1:55 हो चुके हैं दोस्तों, और हंसते मुस्कुराते रहिए, अच्छे गानों के साथ आपका साथ मिला सुहाना सफ़र में, यही हम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कई लोगों के हम गाने चला पाते हैं, कईयों के नहीं चला पाते, क्योंकि एक तो टाइम ऐसा होता है और दूसरा कई बार वो गाने नहीं होते हैं, कई बार बहुत डिफरेंट चॉइसेस होती हैं सभी की। तो कोई बात नहीं, सोके अगली बार अपनी लिस्ट बना के रखिएगा। पर सबको हम थैंक यू बोलते हैं जो भी हमारे साथ थे। मैं थी आपके साथ पूनम, और हमारी और भी टीम के सारे लोग हैं इस समय, और स्पेशली हम ये कहेंगे कि जिन्होंने भी मैसेज किया, जिनके गाने चले उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और जिनके नहीं चल पाए उनके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए हम ज़रूर चलाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, इसके बाद आप सुन पाएंगे उड़ान की कहानी, और स्पेशली ये गाना जाएगा माधुरी जी के लिए। तो माधुरी जी इंजॉय कीजिए अपना ये गाना।
2: RM3 Radio.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। ईरान और अमेरिका के बीच सुलह है। 109 दिनों की जंग के बाद आखिरकार दुनियावी भलाई और आपसी अमन की खातिर दोनों मुल्कों ने जंगबंदी पर मंजूरी जताई है। इस शुक्रवार से आबी रह गुजर आबनाए होर्मुज को दोबारा खोला जाएगा, जहां से सभी कश्तियां गुजर सकेंगी। समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दस्तखत किए गए हैं और इस फैसले से पेट्रोल के दामों में गिरावट आई है।

0: लेकिन स्थिति के सामान्य तर्क लौटने में कुछ महीने लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुताबिक ऊर्जा की सप्लाई चेन पर जो असरात पड़े हैं वो इतनी तेजी से नहीं मिटाए जा सकते। पुराने वित्त मंत्री रंगानाथन परियाची और पुराने श्रम मंत्री सुरेश कालीचरण रिजवी के ट्राइंगल स्क्वायर में है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की तहकीकात के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जा रही है। ये खबर है कि दोनों से पेट्रोली पैदावारों को लेकर 30 बिलियन रुपए के सिलसिले में जांच की जा रही है। नगर पालिकाओं के नए मुंतखब मेयरों और डिप्टी मेयरों के साथ आज मकामी इंतजामिया मंत्री राजीव उचित ने खास मुलाकात की है। शहरों के हालात, शहरियों की सहूलतों और दीगर परियोजनाओं पर गौर किया गया। नए जिम्मेदारानों ने अपने अपने मकसद और कामों पर रोशनी डाली, साथ में संचालन में पेश चुनौतियों का भी मुद्दा उठाया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहली बार स्लोवाकिया के दौरे पर गए हुए हैं। फ्रांस में फलदायक मुलाकातों के बाद उन्होंने भारत और स्लोवाकिया के रिश्तों को उरूज देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में ये विशेष दौरा शुरू किया। स्लोवाक गणराज्य की तरफ से उन्हें वहां का सबसे बड़ी उपाधि ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें तो आपको बता दें कि आज सुबह आज सऊदी अरेबिया और यूरुग्वे के बीच मैच ड्रो रहा और स्कोर रहा 1-1 और ईरान तथा दूसरे देशों की जहां बात करते हैं ईरान का भी मुकाबला ड्रो गया है। इस बीच आज रात फ्रांस और सिनेगल के बीच मुकाबला होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.
2: RM3 Radio, Radio, Radio.
3: उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी।

0: RM3 रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और फेसबुक पेज पर फॉलो करने वाले हमारे सभी फॉलोअर्स का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आ पहुंची हूँ आज एक और नई उड़ान की कहानी को लेकर। और आज की कहानी भी एक ऐसी दिलचस्प महिला की कहानी जो बहुत ही कम उम्र में अपने बड़े बड़े सपने सजाने निकल चुकी है बहुत ही हिम्मत के साथ और बिल्कुल हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम जरूर कुछ जोड़ना चाहेंगे कि सफलता अपने आप में नहीं होती, वो मौका नहीं मिलता जब तक हम अपने प्रयासों को पूर्ण करने के लिए बस निकल पड़ते हैं। और बिल्कुल एक हिम्मत होनी चाहिए, मेहनत की एक हिम्मत होनी चाहिए, लगन की, और इसी के साथ हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि कैमरा के पीछे काम करने वाली एक ऐसी सशक्त महिला की आज हम बात करेंगे जो हमेशा कैमरा के पीछे रहती है और लोगों तक बस कहते ना एक खूबसूरत दुनिया दिखाती है। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे आयशा बालक जो कि एक कैमरा वुमेन है और आज हमारे साथ हमें सौभाग्य मिला है उनसे बात करने का। आयशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते रत्ना जी, आपका बहुत धन्यवाद मुझे आज अपने शो में बुलाने के लिए।
0: आप बहुत प्यारी लग रही हैं।
1: धन्यवाद, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं।
0: थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम बताना चाहेंगे कि आज ये नाजुक सी जो कली है, बड़े बड़े कारनामे करती है, बड़े बड़े कैमरा को हैंडल करती है और बिल्कुल इतनी अच्छी वाली शूटिंग करती हैं, भाई शूटिंग यानी गोली चलाने वाली शूटिंग नहीं पर फिल्मों की शूटिंग करती हैं और प्रोग्राम को आप तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल, तो चलिए आज बात करते हैं आयशा जी से। आयशा, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि कैमरा और लाइट्स ये दुनिया में आने से पहले, मतलब ये फील्ड में आने से पहले आपने किस तरह से यहाँ तक आप पहुंच पाई हैं, हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं।
1: दरअसल रत्ना जी, कैमरे और लाइट की दुनिया में आना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस फील्ड में प्रवेश करूंगी, क्योंकि HSC के समय मेरा जो क्षेत्र था, जो विषय मैंने चुना था, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, हिंदी, फिलॉसफी, ये

मेरा जो क्षेत्र था वो अलग था बिल्कुल. और मेरा जो सपना था वो हमेशा ये था कि मैं शिक्षिका बनूँ, एजुकेटर बनूँ. और मैंने नेशनल लेवल पे मैंने प्राप्त किया था, मैं दूसरे स्थान पर आई थी. और मुझे इसी के दौरान एक छात्रवृत्ति मिली कि मैं भारत जाऊं और हिंदी में पढ़ाई करूं. तो मैंने वो एक्सेप्ट किया और

0: तो मैंने शिक्षा क्षेत्र ज्वाइन किया
1: जी,
0: और मैं बहुत खुश थी। तो मैं एक साल तक शिक्षक के रूप में मैंने काम किया है यहाँ पर स्कूल में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं तक क्यों रुकी हूँ, क्योंकि बचपन में जब भी मैं टेलीविज़न देखती थी तो उस समय टेलीविज़न का बहुत क्रेज़ हुआ करता था। जब भी हम टेलीविज़न देखते थे तो लगता था कि इसके पीछे की दुनिया कैसी होगी, क्या है इसके पीछे। तो मैंने सोचा कि मेरा हमेशा लगाव था कि मैं जानूं इसके बारे में, तो मैं क्यों यहीं तक रुकूं, मुझे और जानने की इच्छा हुई।
1: बिल्कुल।
0: फिर मैंने अप्लाई किया फिर से पुनः छात्रवृत्ति के लिए भारत जाने के लिए, और मेरा एक ही मोटिव था कि मुझे नेशनल टेलीविज़न ज्वाइन करना है तो करना है, किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में। ज्वाइन कैसे करूं
1: ये नहीं पता था,
0: ये नहीं पता था। हिंदी के साथ केवल हिंदी की पढ़ाई करके मैं ज्वाइन तो नहीं कर सकती थी। मैंने रिसर्च किया, फिर मुझे पता चला कि मुझे मीडिया में मास्टर्स करना चाहिए ताकि मैं और सीखूं, अपने आप को और बेहतर बनाऊं, ताकि मैं इस फील्ड में निपुणता से प्रवेश करूं, जो कि मैंने किया। और मैं सिलेक्ट हुई जाने के लिए, मुझे छात्रवृत्ति मिली, इसके लिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद करती हूं कि मुझे ये मौका दिया गया। और मैं वहां गई और मैं अपने कोर्स के दौरान, मास कम्युनिकेशन कोर्स के दौरान, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं फिल्म मेकिंग सीखूँ, फिल्म मेकिंग टेलीविज़न और रेडियो। तो इसी के साथ फिर मैं कैमरा क्या होता है
1: मैं समझ पाई।
0: फिर मुझे ये एहसास हुआ कि कैमरा जो है ये एक मशीन नहीं है, ये एक कहानी को दर्शकों के सामने लाना, किसी कहानी को, ये एक जरिया है। तो इसी को मैंने अपनाते हुए मैंने कहा कि हाँ, ये सीखना है, इस दुनिया में प्रवेश करना है, तो मैं सक्सेसफुली इसमें प्रवेश।
1: आपका सच में जैसे ये यात्रा बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प यात्रा, और अभी तो ये शुरुआत है मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल जैसे आयशा हमें बता रही है कि धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं पर शुरू कहाँ से करें ये नहीं जान पाते। पर कहते हैं ना, जैसे जैसे ज़िंदगी बहती चली जाती है, आप उस बहाव में आगे बढ़ते चले और आपको क्या चाहिए वो अपने आप उभर कर सामने आता है। और जैसे आपने बताया कि आपको भी पता नहीं था कि आपको करना क्या है, पहले तो आपने कहा कि आपको टीचर बनना है, और जब जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तब आपको लगा कि इस ये तो मतलब यहाँ पर आकर ज़िंदगी मानो रुक सी गई है और आपको और कुछ चाहिए, एम्बिशन जैसे कहते हैं। और फिर आपने खोज कार्य शुरू किया और फाइनली आपने ये सीखा। मैं पूछना चाहूँगी, इस फील्ड में आप खुश हैं?
0: बहुत ज़्यादा, मेरे चेहरे पे झलक रहा होगा देख, क्योंकि मैं लालची हूँ। मैं किस चीज़ की लालची हूँ? ज्ञान की। मुझे हमेशा जिज्ञासा लगी रहती है कि मैं और कुछ सीखूँ और नया करूँ। मुझे ये रूटीन वाला अच्छा नहीं लगता कि मैं एक ही चीज़ कर रही हूँ, इसी में सीमित रखूँ अपने आप को, और एक्सप्लोर करने की क्षमता रखती हूँ तो मैं करती हूँ, क्यों ना करूँ। ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने हमको ज्ञान दिया तो उसको प्रयोग क्यों ना करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझती हूँ आज के जीवन में, पहले एक समय था कि हम एक ही कार्य को लेकर पूरी जिंदगी एक ही कार्य के साथ जुड़े रहते थे, लेकिन अब समय के साथ, समय में ऐसा परिवर्तन आया है जहां पर हमें अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है और मल्टीटास्क करना है। और आप जैसे बता रही हैं कि बिल्कुल मोनोटोन कार्य जब हो जाता है तो एक तरह से लाइफ बोरिंग सी हो जाती है, पर अगर रोज कुछ नया करने को मिले तो मैं समझती हूँ लाइफ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी होती है। और मैं यह जरूर पूछना चाहूंगी आपसे आयशा, कि जब आपने घर पर यह कहा कि मैं कैमरा वुमेन बनना चाहती हूँ, तो आपके फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था?
0: जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल मैं एक सिंगल मदर की लड़की हूँ। मेरा पालन पोषण मेरी नानी और मेरी माँ ने किया अकेले। तो बचपन से मैंने यही देखा कि कैसे दो महिलाओं ने समाज से लड़कर एक लड़की का, एक बच्चे का पालन पोषण किया बहुत साहस के साथ। तो मेरी जो माँ है उनका भरोसा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है कि मेरी लड़की कुछ भी करेगी जीवन में, मेरा नाम ज़रूर रोशन करेगी। मैं शिक्षा के क्षेत्र में थी तो वो बहुत खुश थी, मैं मीडिया क्षेत्र में आई वो बहुत खुश है, मैं सिनेमा क्षेत्र में आई तब भी वो बहुत खुश है, क्योंकि उनको पता है कि मैं कुछ भी करूँगी तो अच्छा ही करूँगी फ्यूचर के लिए. तो मेरा हौसला हमेशा मेरी माँ ने बढ़ाया और वही मतलब उनके बदौलत ही आज मैं यहाँ खड़ी

0: हूँ, आज मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे इतने सारे मौके मिले क्योंकि उन्होंने मेरा साथ कदम कदम पर दिया।
1: तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि एक पेरेंट का हाथ बच्चों के लिए, उनका एनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चा एक क्षेत्र में जाना चाहता है और पेरेंट्स अगर मना कर दे, कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने और बच्चा चाहता है कि वो किसी म्यूज़िक आर्टिस्ट या म्यूज़िक के ग्रुप में जुड़े या फिर किसी कला के क्षेत्र में जुड़े, तो कई बार पेरेंट्स का साथ नहीं होता। तो आयशा आप क्या कहना चाहेंगी कि यहाँ पर पेरेंट्स का साथ?
0: बेशक बेशक, आपको अपने बच्चों पे भरोसा रखना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: उनका सुनना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं। मजबूरी में आकर कोई भी किया गया कार्य सक्सेसफुल नहीं होता है, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है एज एन इंडिविजुअल। तो मैं इस क्षेत्र में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे कभी किसी ने मेरे ऊपर दबाव नहीं डाला कि तुमको ये करना है, यही कुछ भी नहीं, जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे दिल ने कहा, मैंने अपने दिल की सुना और मैंने किया।
1: और मैं यहाँ पर एक और सवाल इसी के साथ जोड़ना चाहूँगी कि क्या कभी आपने ये सुना कि इस क्षेत्र में तो ज़्यादातर पुरुष होते हैं, इस क्षेत्र में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी?
0: बेशक, बहुत सुना मैंने। मैं जब इंटरव्यू देने गई थी नेशनल टेलीविजन में एज ए कैमरामैन, तो मुझसे कहा गया, बाहर मैं बैठी थी तो कोई इंटरव्यू भी देने आया था, तो मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा तो मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। तो मैं किस चीज़ का? तो मैंने कहा एक ही तो इंटरव्यू चल रहा है कैमरामैन का ना। तो फिर कहता है तुमको दिखने की कैमरामैन है, ये मैन वाला जॉब है, ये मर्दों का काम है। मैंने कहा अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आप कर सकते हैं वो एक नारी नहीं कर सकती, वो स्त्री नहीं कर सकती? तो वो चुप हो गया। तो मेरा मानना है कि कोई भी कार्य के लिए कोई जेंडर नहीं होता है, और जहाँ तक आपका टैलेंट और मेहनत है, मेहनत में कोई जेंडर नहीं होता है। अगर आप मेहनत लगन से कुछ करते हैं तो स्त्री है या कोई भी है तो कोई भी कर सकता है। अगर स्त्री डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, पायलट बन सकती है, तो कैमरा वुमेन क्यों नहीं?
1: सही बात, सही बात, बहुत ही बड़ी बात कही आयशा, और मैं दाद देना चाहूँगी क्योंकि ये हिम्मत होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ समाज में आज कई बार देखा गया है, जैसे आपको सवाल किए गए, कई बार उंगलियाँ उठाई जाती हैं, कई बार आप ही की क्षमता को वो जैसे रोका जाता है आगे बढ़ने के लिए, पर बहुत कम लड़कियां, बहुत कम महिलाएं ये हिम्मत दिखा पाती हैं, और इसके लिए हम बहुत सच में बहुत शाबाशी देना चाहेंगे इस कार्य के लिए। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आयशा, जब आपने पहली बार, क्योंकि आप जैसी नाजुक सी कलाइयां वाली, और जब कैमरा की बात करते हैं, कैमरा इतना भारी भरकम, जब आपने पहली बार कैमरा को अपने हाथ में उठाया था तो क्या आपके हाथ कांपे थे? आपका पहला अनुभव कैसा था?
0: देखिए, अपने कोर्स के दौरान मैंने DSLR चलाया, मतलब दूसरे टाइप ऑफ कैमरा। लेकिन ब्रॉडकास्ट कैमरा जो है वो अलग है,
1: बिल्कुल
0: उनका स्ट्रक्चर ही अलग है, लेंस ही अलग है, और उनको हैंडल करने का तरीका, टेक्निक्स भी अलग है,
1: बिल्कुल।
0: तो जब मैं फिल्म्स करती थी या यूनिवर्सिटी में कैमरा हैंडल करती थी तो वो आसान था, आसान था, लेकिन जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा कि ओ इतना बड़ा कैमरा है, तो मैं भी सोची मैं कैसे इसको मैं हैंडल करूँगी।
1: सही बात,
0: मैं सच कहूँ तो कैमरा हमारा 4 किलो का वज़न है, उसको मैं डेली उठाती हूँ, ये टेक्निक की बात है। मुझे सिखाया गया कि उसको हैंडल करने का एक तरीका होता है, और जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है ना,
1: बिल्कुल,
0: तो वैसे ही मैं अपने कैमरे की देखभाल करती हूँ। रोज़ाना उसको लेकर शूटिंग्स पे जाना बाहर, ये एक जिम्मेदारी का काम है।
1: सही।
0: तो पहले उस कैमरे को चेक करते हैं कि उसमें कुछ है या नहीं, उसको साफ करते हैं, फिर उसको ले जाते हैं शूटिंग पर। तो ये एक जिम्मेदारी भरा काम है, मैं उसको बहुत प्यार से करती हूँ। जैसे अपने बच्चे को रखते हैं ना, मैं उसी तरह, वो मेरे बच्चे जैसा है, उसका देखभाल करना, उसको सही तरीके से लौटाना भी, एक खरोंच तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
1: सही बात, एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है। और बिल्कुल आप जिस तरह से बता रही हैं कि उसको बहुत प्यार से संभाला जाता है, क्योंकि सही बात है कि भले आपने किसी से लिया हुआ चीज़ है या वो कैमरा आपको दिया गया है काम के लिए, तो कहीं ना कहीं एक वो कार्य को लेकर आपका जो प्रेम है, वो झलकना चाहिए। और आप जिस कदर से आप जिम्मेदारी के साथ वो चीज़ को संभालती हैं, जैसे आपने कहा कि जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का किसी भी कार्य क्षेत्र को आप ले लीजिए। अब मैं उदाहरण देना चाहूँगी, अब सब्जी वाला जब सब्जी बेचता है तो अपने सब्जियों को भी वो इसी तरह से सहलाता है, पानी डालता है, साफ़ करता है।

क्योंकि वो उन सब्जियों से प्यार करता है। मैं समझती हूँ ऐसा ही भाव होना चाहिए आपके काम के प्रति। और बिल्कुल आज हमारे साथ एक ऐसी सशक्त नारी, सशक्त महिला हमारे साथ है स्टूडियो में, आयशा बालक, जो बिल्कुल कैमरा वुमेन है और बिल्कुल निडर है और समाज के सामने सर उठाकर जीती है। तो चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में, आपको ये भी बताते चले इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें सहयोग मिल रहा है। तकनीक पर हमारे साथ है यूसुफ और साथ ही साथ हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका और हमारे साथ प्रोड्यूसर है रितेश मोहाबिया। बिल्कुल जुड़े रहें, एक गीत के बाद आते हैं थोड़ी ही देर में।

की कहानी, ज्ञान की कहानी। जी हाँ, रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी। और जैसे इस गाने में मनीष कुमार रामावता ने कहा कि नारी जाति है सबसे न्यारी, उसी प्रकार की हर नारी शक्ति को हम वंदन करते हैं। और जैसे आयशा ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, बस ड्राइवर तक, और आज कहेंगे तो एस्ट्रोनॉट, चांद तक जा चुकी है महिला, तो कैमरा वुमन क्यों नहीं बन सकती। तो बिल्कुल उन्होंने एक

0: एग्जाम्पल सेट किया है और प्रेरणा से भरी आज की ये कहानी है, आयशा बालक की कहानी। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आयशा से कि आयशा, आपकी जो सबसे पहली शूटिंग थी वो किस चीज़ की आपने शूटिंग की थी, और आपका अनुभव अगर आप साझा करना चाहें आज के इस शो पर।
1: जी, मेरी सबसे पहली शूटिंग थी एक मूवी शूटिंग, स्लेवरी पर था, 1968 मूवी, 2018 में शूट हुई थी। तो मैं एज एन एक्ट्रेस थी, मतलब मुझे एक छोटी सी भूमिका दी गई थी निभाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने किससे कहा कि मैं बहुत लालची हूँ, ज्ञान की जिज्ञासु हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे भी देखना है ये कैमरे के पीछे क्या क्या कैसे हो रहा है। तो कह के आओ, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञान तो है, तो उसको ऑपरेट करके देख लो कि सिनेमा कैमरा कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो मैंने किया थोड़ा बहुत एक दो शॉट्स, फिर मुझे लगा कि हाँ, अब ये मेरी नई प्रेरणा है, अब मुझे सिनेमाटोग्राफी में जाना है और ज़्यादा सीखना है कि फिल्म्स कैसे बनाते हैं। तो ये भी, मतलब मैं हर एक जहाँ भी जाती हूँ मैं कुछ सीख के आती हूँ।
0: ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सीखते रहना नया, और यही हमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिलाता है कि कुछ जानना है, कुछ आगे बढ़ना है। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आप एक कैमरा वुमेन है, तो कई बार ऐसा भी होता होगा धूप, बरसात या फिर तूफ़ानी मौसम, या फिर कई बार लंबे आवर्स की शूटिंग, या फिर कई बार फिजिकल चैलेंजेस की वजह से, आप इन सारे चैलेंजेस को फेस कैसे करती हैं?
1: एक कैमरा ऑपरेटर के लिए ये फिजिकल और मानसिक चैलेंज दोनों हैं, दोनों तरफ से चैलेंजिंग है। एक तो मैं अपने आप को हमेशा फिट रखती हूँ पहले, और मानसिक रूप से फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, हम लोग रेसेस भी शूट करते हैं हर हफ्ते शॉ डुमर्स में, कितनी धूप रहती है वहाँ,
0: बिल्कुल,
1: और धूप में बरसात में हमको शूट करना है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं रहते।
0: आप ये बहाना नहीं बना सकते हो कि बहुत जोरों की बारिश हो रही है तो आज शूटिंग कैंसिल।
1: और ये भी बहाना नहीं बना सकती, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो मैं शूट नहीं कर सकती, मैं कैमरा नहीं उठा सकती, नहीं, कोई बहाना नहीं चलता है। आपको हमेशा रेडी होना चाहिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए, चाहे वो धूप हो, चाहे वो बरसात हो, लेट नाइट हो, या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग। ऐसे तो मैं कभी सुबह उठ नहीं पाती हूँ, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन शूटिंग्स के दौरान मैं उठ जाती हूँ 4 बजे 3 बजे, कभी कभी सनराइज का शॉट लेना होता है, प्राकृतिक शॉट्स लेने होते हैं, तो सुबह सुबह पहाड़ पे 6 बजे पहाड़ पे पहुँच जाना होता है, ट्रैकिंग करते हुए कैमरे को साथ में लेके जाते, तो ये सब बहाना नहीं चलता। मैं हमेशा मोटिवेटेड फील करती हूँ कि हाँ चलो, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कुछ नया करने को मिलेगा, तो इसको मैं हमेशा मोटिवेशन बनाती हूँ।
0: और मैं समझती हूँ आयशा, जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, जो बहाना नहीं बनाते, मैं समझती हूँ वही लोग जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। और मैं समझती हूँ आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक आप, वो कहते हैं ना, वत कोतों, या कहेंगे कि एक जैसे कंफर्ट जोन में आप रहोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी, धूप, बारिश, पानी, तूफान, चाहे कुछ भी आ जाए, आपको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये सारी चीज़ें आपके, जैसे कह सकते हैं ना, आपके लक्ष्य से आपको भटका नहीं सकती।
1: बिल्कुल, ये आप कह रही हैं, जैसे हम लोग जाते हैं प्राकृतिक शॉट्स लेने तो वाटरफॉल्स ये सब जाना पड़ता है, तो एक कैमरा ऑपरेटर के लिए वो सिर्फ एडवेंचर नहीं करता है, वो शॉट्स लेता है। अब अच्छे शॉट्स कैसे आएंगे, तो कभी कभी क्या होता है, पानी में घुस जाना पड़ता है, पानी में घुस गए, कीचड़ में घुस गए, और जब वापस घर आते हैं तो पूरा कपड़ा कीचड़ से भरा हुआ।
0: और उसमें सबसे ध्यान रखना है आपको कैमरा का, जैसे आपने बोला कि बच्चे की तरह उसे संभालना है, उसे खरोच नहीं आनी चाहिए।
1: मैं जहां भी जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ देखो, कैमरे को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं गिर जाऊं, मैं मर जाऊं, या कुछ भी हो जाए, कैमरा सही सलामत वापस आना लौटना चाहिए।
0: सही।
1: तो ये सब है डेडिकेशन, इसको डेडिकेशन और जुनून, काम के प्रति जुनून अगर हो ना, तो कोई भी टास्क आपको, कोई भी असाइनमेंट आपको कठिन नहीं लगेगा, वो चैलेंज भी आपको प्यारा लगेगा कि वाह, चैलेंज आ रहा है, चलो इसका सामना करते हैं।
0: क्योंकि मैं समझती हूँ ये एक ध्येय होना कि कुछ भी हो जाए इसको पूरा करना है, और अच्छी तरह से पूरा करना है, तब जाकर आप प्रगति की राह पर आप आगे बढ़ सकते हो। और मैं यहाँ आयशा आपसे एक बहुत ही, कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सवाल है, मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी कि जहाँ पर एक सेट, जहाँ पर पुरुष क्रू मेंबर्स आपके साथ काम करते हैं, तो ऐसे में अपने लिए एक जगह बनाना, क्या ये आसान था?
1: जी, ये बहुत मुश्किल था शुरुआती दौर पर, क्योंकि हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, ये फैक्ट है।
0: यस।
1: लेकिन मैं इस मामले में थोड़ी भाग्यशाली हूँ कि जब मैं नेशनल टेलीविजन मैंने ज्वाइन किया तो समस्त क्रू तो पुरुष ही है जैसे आपने कहा,
0: बिल्कुल,
1: किंतु मेरे जो सीनियर्स थे वो बहुत हेल्पफुल रहे हमेशा, मुझे कैमरे की जो हर एक पार्ट है सिखाना, कैसे उसको हैंडल करना, सेट पे आपका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, वो सब सिखाया उन्होंने। और मैं हमेशा एक सीनियर की बात मुझे अभी तक याद है, वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि यू शुड अनलर्न टू लर्न। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है यूनिवर्सिटी में आप उसको भूल जाइए, जब आप नेशनल टेलीविजन के आंगन में प्रवेश करती हैं तो अपना ज्ञान छोड़ के भूल जाइए कि आपने कभी कुछ सीखा ही नहीं, और यहाँ के तौर तरीके सीखिए तभी लोग आपको अपनाएंगे। तो मैंने ये किया, मैंने ये आजमाया और इट वर्क्ड। फिर जब मैंने यहाँ के तौर तरीके सीखा, फिर जो मेरे निजी ज्ञान है मैंने उसको इसमें कंबाइन किया, फिर जाके मैंने अपनी पहचान बनाया, अपना स्टाइल बनाया, और इस चीज़ ने मेरी बहुत मदद की
0: अपने आप को फ्लरिश करने में। ये चीज़ बहुत काम आई,
1: बहुत काम आई,
0: बिल्कुल।
1: तो मैं कहूँगी कि हाँ, सीनियर्स ने मेरा सपोर्ट किया, मुझे ये प्रेरणा दी कि कैसे। और एक और चीज़ है, कैमरा जो है हमेशा ट्राइपॉड पे होता है, आपने देखा होगा।
0: हाँ जी।
1: लेकिन एक होता है कि आप उसको हाथ में लेके भी आप शॉट्स लेते हैं,
0: हाँ।
1: है ना, तो वो काफ़ी कठिन होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कैमरा हमारा 4 किलो का है, उसको उठाना कैसे, कंधे पे लगाना
0: आसान नहीं,
1: आसान नहीं है। लेकिन वो टेक्निक मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया,
0: बिकॉज एक 4 किलो की चीज को उठाकर उसे बिना हिलाए आपको एक चूज एक एक एक शूट करना है, एक चीज को ध्यान पूर्वक देखना है, उसमें हिलना नहीं है, कोई आवाज नहीं, और बहुत सारी ऐसी तकनीक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं समझती हूँ ये कोई आसान काम नहीं होता। और मैं समझती हूँ आपने कभी मतलब कितने घंटे तक आपने कैमरा को हाथ पर उठाए या कंधे पर उठाए आपने शूट किया है?
1: 30 मिनट
0: लगातार
1: हाँ। और बिना हिलाए, जैसे आपने कहा स्टेबिलिटी रखना है,
0: हाँ।
1: तो ये टेक्निक की बात है, और मैं कर पाई क्योंकि मुझे सपोर्ट मिला
0: जी।
1: लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ तुम कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती, डोंट डाउट योरसेल्फ, यू कैन डू इट। और इसी चीज ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैं आगे मतलब और सीखती गई।
0: बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक चीज याद आ रही है, अब एक छोटा सा उदाहरण ही ले लो कि आप मेहंदी लगा रहे हो और मेहंदी वाली आपसे कह रही है आप हिलो मत, आधे घंटे तक वो लगातार लगाए जा रही है, और उसी टाइम पर आपको प्यास लगती है, आपको भूख लगती है, आपको सिर में खुजली आती है, तो आप सोचिए कि एक भारी भरकम कैमरा को उठाकर आधे घंटे तक बिना हिले आपको वो शूट करना है, इससे बड़ा चैलेंजिंग काम मैं समझती हूँ हो नहीं सकता। तो ये बिल्कुल हैट्स ऑफ कह सकते हैं आयशा को। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आयशा जब आप रात को शूटिंग करती है या ऐसी लोकेशंस पर जाकर शूटिंग करती है, तो कोई ऐसा मुश्किल का मुद्दा कभी उठा है?
1: ईश्वर की कृपा से मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। देखिए, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो
0: क्रू
1: मेंबर्स हैं उसकी सुरक्षा का की जिम्मेदारी उठाते हैं, और हमें जैसे सेफ्टी शूज़ पहनाया जाता है।
0: सही।
1: जैसे हम मंदिरों में शूटिंग करने जाते हैं तो मंदिर में तो शूज़ पहन के नहीं जा सकते हैं, और नंगे पाँव फर्श पर आपको करंट भी लग सकता है। ऐसे केसेस हुए हैं सीनियर्स के साथ, तो उन्होंने ये शेयर किया कि तुम्हारे साथ ना हो, इसीलिए तुम हमेशा अपने प्रिकॉशंस लेके जाना। तो हमको प्रोवाइड किया जाता है एक स्पेशल मैट, उसको नीचे रखा जाता है, फिर हम उसके ऊपर चढ़ के फिर हम अपना कैमरा ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जैसे
0: सेंसिटिव है, बहुत नाजुक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है,
1: कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे हम अपना प्रिकॉशंस लेते हैं। और फिर जैसे आपने कहा कि देखिए रात में बहुत सारी समस्याएं होती हैं,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन मॉरिशस मैं कहूँगी कुछ हद तक सेफ है। मैं भारत में रही हूँ, तो भारत में जैसे पत्रकार लोग होते हैं वो बहुत चैलेंजेस के थ्रू गुजरते हैं, जैसे बाहर जाना, दंगे होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ जाना, पत्थर लाठी, कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड। लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, ये नहीं कहेंगे कि ओ वहाँ पे पत्थर चल रहे तो हम नहीं जाएंगे। अगर निकले हैं तो हमको सनसनी खबर लेके आनी है, किसी भी हालत पे वो कैमरा पर्सन शॉर्ट्स लेके जरूर आएगा।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी हालत में शॉर्ट्स लेके आना है तो आना है और उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रदान करना है।
0: बिल्कुल, तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगी आयशा, क्या जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे तो क्या आपको भी इन सारी चीजों के लिए तैयार किया गया था?
1: हाँ बिल्कुल तैयार किया गया था, तभी मैं इतनी बोल्ड, मैं कह सकती हूँ कि मैं बोल्ड हूँ और मैं फियरलेस हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं।

0: लगता है, आप मुझे लेट नाइट बाहर भेज देंगे शूटिंग के लिए, कोई भी चैलेंज दे देंगे, मैं एक्सेप्ट करूंगी. क्योंकि मैं वहां पे मैंने ज्यादा देखा है कि कैसे चुनौतियां होती है. कैसे
1: वहां का जो फील्ड वर्क है वो मॉरिशस के फील्ड वर्क से बहुत ही विपरीत है, बहुत ही ऑपोजिट है.
0: बहुत ही ऑपोजिट है. वहां पे कठिनाइयों का सामना बहुत करना
1: बहुत
0: पड़ता
1: होता है
0: एक पत्रकार के लिए, खासकर मीडिया में.
1: बिल्कुल.
0: हाँ, और कंपटीशन भी ज्यादा है ना वहाँ, इसीलिए सब यहाँ की हाँ हमको सबसे अच्छा शॉट लेके आना है, सबसे अच्छी फोटोग्राफ
1: पहले पहले उसे मीडिया पर
0: अपलोड करना है, इसीलिए हमको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है.
1: जी, तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगी, एज अ कैमरा ऑपरेटर आपको व्यक्तिगत रूप से आपको किस तरह से इसने सशक्त बनाया, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको स्ट्रांग बनाया, क्या इसने आपके वे ऑफ थिंकिंग में, आपकी जैसे आप पहले चीजें करती थी और अब आप जैसे चीजें करती हैं, क्या इसमें कोई फर्क, कोई अंतर आया है?
0: बहुत अंतर आया है. पहले तो आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर आता है डिसीजन मेकिंग की. इंस्टेंटली कभी कभी आप फील्ड में है और आपको कोई डिसीजन लेनी पड़ती है तो आपको सोचने का समय नहीं मिलता ज़्यादा. तो ये आपकी एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बढ़ाती है कि इंस्टेंटली आप डिसीजंस लेते हैं. और धैर्य, मेरे अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था, मैं सच कहूँ आपसे. हम लोग टीवी पर देखते हैं 26 मिनट का प्रोग्राम है ना, बहुत हाँ. मजा आता है देखकर कि हाँ टीवी बंद कर दिया. लेकिन कभी लोग सोचते हैं कि इस 26 मिनट के प्रोग्राम के पीछे कितने घंटों की शूटिंग चली है.
1: बिल्कुल.
0: हम दिन भर शूट करते हैं, 6-7 घंटे लगातार शूट
1: प्रोग्राम के
0: उस एक 26 मिनट के प्रोग्राम के लिए. मान लीजिए कोई रेसिपी वाली प्रोग्राम ही है. हाँ. हम हाँ ठीक है कढ़ाई में सब्जी डाल रहे हैं, कितनी बार वो सब्जी डाला गया
1: उसे अच्छा शॉट देने के लिए,
0: अच्छा शॉट लेने के लिए, वो सोचते नहीं है.
1: सही बात.
0: तो ये धैर्य का काम है. क्योंकि मैं कभी पहले बहुत गुस्सा होती थी, मतलब कि ये चीज़ नहीं हो पा रहा है जल्दी, तो हाँ इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करो. लेकिन कैमरा ऑपरेटर बनने के बाद मेरे अंदर ये धैर्य शक्ति आई कि एक चीज़ को अगर 10 बार भी करनी है उसको परफेक्ट बनाने के लिए, तो वो 10 बार करेंगे उसको, चाहे वो दिन भर लग जाए उसको करने में.
1: सही बात. क्योंकि बहुत सारे लोग जो कैमरा के उस पार जब हम पिक्चर देखते हैं, आसान होता है क्रिटिसाइज करना, आसान होता है गलतियाँ निकालना, पर उसके पीछे की जो मेहनत है उसको कभी आप देखिएगा, वो भाई कहते हैं ना कि जान निकाल लेती है. और सच में जैसे आयशा कह रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा धैर्य चाहिए. कई बार तो ऐसा होता है कि कई घंटों तक वो सीन ठीक नहीं हो पा रहा है जैसा सीन उन्हें शूट करना है, और लगातार करते रहते हैं जब तक कि वो एक, जैसे उन्होंने कहा ना कि कोई रेसिपी वाली सीन होती है सब्जी डाल डाल कर, मुझे लगता है जो पकाने वाला हो वो थक जाए. कई बार तो ऐसा लगता है कितनी सब्जियाँ इसके पीछे वेस्ट हो गई, लेकिन उसे एक शॉट के लिए भाई मेहनत करना बहुत ही आवश्यक है. मैं पूछना चाहूंगी आयशा, अब तक आपने किन किन टाइप्स के, यानी किस किस प्रकार के प्रोग्राम्स शूट किए हैं?
0: जी देखिए, एज ए कैमरा ऑपरेटर, एज ए कैमरा वुमन, आपके पास चॉइस नहीं रहता है कि मुझे ये शूट करना है, मैं ये फेवरिज्म करूं.
1: हाँ.
0: आपको जो असाइनमेंट दी जाती है आपको उसको करना होता है. कल्चरल शोज चाहे हो, स्पिरिचुअल रिलीजियस चाहे वो प्राकृतिक, कोई भी शूटिंग्स हो आप उसको, आपको उसको करना है और निपुणता के साथ.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: तो मैंने सब कुछ किया है ना, मूवी से लेकर प्राकृतिक शॉट्स, कल्चरल शो,
1: डॉक्यूमेंट्रीज
0: के बारे में बाद में थोड़ा एलाबोरेट करूंगी.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प ऐसा एक करियर जहाँ पर हर रोज कुछ ना कुछ नया आपके लिए रिजर्व है. मैं एक और सवाल पूछकर फिर एक गीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि एक महिला होने के नाते जो ये, क्या आप कहानियों को अलग तरह से देखती हैं? बिकॉज आप एक कैमरा वुमेन है, तो नॉर्मली जब हम चलिए मोबाइल पर ही जब हम कुछ शूट करते हैं तो कैमरा उठाया, शूट कर लिया, हो गई शूटिंग. बट आप एक कैमरा वुमेन है, तो क्या उसे आप एक अलग नज़रिए से शूट करती हैं?
0: जी, मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति, हर एक कैमरा ऑपरेटर का अपना नज़रिया होता है. लेकिन एक नारी, एक महिला जो है वो थोड़ी ज़्यादा इमोशनल चीज़ों पे ध्यान देती हैं, छोटी छोटी डिटेल्स पे वो ध्यान देती हैं ज़्यादा. जैसे कि मैं कहूँ, मान लीजिए कि हमारे स्टूडियो में एक प्रोग्राम चल रहा है तो किसी महिला ने साड़ी पहनी हुई है, तो हाँ आप शॉट ले रहे हैं नॉर्मल, लेकिन एक महिला होने के नाते हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है कि अगर हम क्लोजअप शॉट्स ले रहे हैं तो उनकी आँखों पे या होठों पे. तो कभी क्या होता है कि एक आईलाइनर यहाँ कम पड़ गया, काजल वहाँ ज़्यादा पड़ गया, तो वहाँ पे हमारा हमारी नज़र जल्दी चली जाती है। जैसे कि साड़ी की प्लीट्स हो, उसको परफेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए प्लीट्स थोड़ा इधर उधर हो गया, तो एक टेंडेंसी होती है कि उसको हम सुधारें ताकि हम उसको परफेक्ट

0: परफेक्ट बनाए और परफेक्ट शॉट आए. तो ये सब डिफरेंसेस है मतलब महिला और पुरुष के.
1: बिल्कुल, मैं सोचती हूँ एक तरह से देखा जाए तो महिलाएं इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान देती हैं, ज्यादा गौर करती हैं, और इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि पुरुष जो हैं कैमरामैन जो हैं वो नहीं करते, पर जैसे आयशा बता रही हैं कि बेशक हम महिलाओं के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं. चलिए गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में उड़ान की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए.

0: जी हाँ, जहाँ नाजुक कलाइयाँ रोटी पकाती हैं, वहीं नाजुक कलाइयाँ एक भारी भरकम कैमरा भी उठा सकती है और बहुत अच्छी तरह से उठा सकती है। और ऐसा कर दिखाया है आयशा बालक। वैसे हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये कार्य सच में करती हैं और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, आज आयशा हमारे साथ जुड़ी है। आयशा, आपने शादी, न्यूज़, डॉक्यूमेंट्रीज ऐसे कई सारे शूट किए हैं, इसमें से आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया?
1: जी, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया डॉक्यूमेंट्री शूटिंग। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी काम किया है रिसेंटली, गिरमिटिया। इट वाज मोर हिस्टोरिकल कि हमारे इंडेंचर्ड लेबरर्स कैसे मॉरिशस आए और उनके साथ कितने अत्याचार किए गए। तो ये सब जो ह्यूमन इंटरेस्ट कहानियाँ हैं उनको शूट करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और उस फिल्म में मैंने हीरोइन की भी भूमिका निभाई थी और मैं कैमरे के आगे कैमरे के पीछे दोनों थी, है ना, टेक्निकल क्रू में भी और आगे भी। तो ये सब करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, ये मेरी दिलचस्पी ज़्यादा है इन सब की।
0: बिल्कुल। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जब आप लाइव इवेंट्स शूट करती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ चलो डॉक्यूमेंट्रीज आपने शूट कर लिया, एडिट करना है, उसको जोड़ काट छांट कर फिर उसको जोड़कर आपको एक फिल्म तैयार करके प्रेजेंट करनी है, बट जब हम लाइव इवेंट्स की बात करते हैं, जब कोई लाइव जैसे टेलीकास्ट होने वाला प्रोग्राम है, तो वहाँ तो आप कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, तो ऐसे में आप प्रेशर को हैंडल कैसे करती हैं?
1: हाँ, देखिए पहली चीज़ तैयारी होती है, प्रिपरेशन, क्योंकि लाइव इवेंट्स एक बहुत बड़ा काम होता है। मान लीजिए कोई लाइव इवेंट चल रहा है 7 बजे, लेकिन उसकी तैयारी आपको पता है 6-7 घंटे पहले से शुरू हो जाती है। जो हमारा आउटसाइड ब्रॉडकास्ट बड़ा सा वैन है वो पहले से मौजूद रहता है वहाँ पे साइट पर, उससे पहले साइट सर्वे होता है ताकि हमको पता चले कि कैमरे कहाँ प्लेस किए जाएंगे और कौन कौन से शॉट्स लिए जाएंगे किस मोमेंट पर। तो ये सब एक तैयारी होती है, जो टेक्निकल क्रू से लेकर हम सारा कोई मतलब मिल बांट कर ये टास्क करते हैं। तो ये तैयारी हो गई। फिर दूसरी चीज़ है, आपको काल्म रहना होता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली जैसे आपने कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कुछ काम नहीं कर रहा हो, कैमरे में कुछ फॉल्ट आ गया हो, तो उसको जल्दी जल्दी ठीक करना होता है। तो अगर उस समय आप हड़बड़ाएंगे, डर जाएंगे, पैनिक करेंगे तो काम नहीं बन पाएगा, और अक्सर होता है। लेकिन हम लोग अच्छे से काल्मली साथ मिलकर उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और डरना नहीं चाहिए। अब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना काम करेंगे, अब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही अगर आप कहीं भी प्रवेश करेंगे ना तो मुसीबतें नहीं आती हैं।
0: सही बात।
1: काम आपका आसान बन जाता है।
0: बिल्कुल। और कोई भी मतलब काम, कहते हैं ना कि हड़बड़ी का

0: काम शैतान का होता है, इसलिए हमेशा दिमाग को ठंडा रखना है और बिल्कुल परिस्थिति को भांप कर समझ कर उस परिस्थिति को जल्दी से, जैसे जितनी जल्दी हो सके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना है, ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। वैसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आजकल तो भाई एआई का ज़माना है, नई नई तकनीकें, हर रोज़ नई चीज़ें हमें मिल रही है सीखने के लिए, तो ऐसे में आप कैसे अपने आप को मतलब मैनेज करती हैं नई चीज़ों को सीखने में?
1: जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने, ये इवॉल्विंग है, जैसे मीडिया क्षेत्र कभी स्थिर नहीं रहता, इसमें नई चीज़ें आपको
0: अपडेट होता रहता है,
1: रोज़ सीखने को मिलता है। तो मैं भी अपने आप को अपडेटेड रखती हूँ, ट्यूटोरियल्स देखती हूँ, वर्कशॉप्स अटेंड करती हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं एक एआई कोर्स भी कर रही हूँ, कैसे एआई के थ्रू आप मूवीज बना सकते हैं, एआई का प्रयोग करके आप एडिटिंग कर सकते हैं, तो बहुत कुछ है सीखने को। तो मैं अभी एआई कोर्स कर रही हूँ और ये चलता रहता है, आपको जैसे अपडेटेड रखना चाहिए अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ।
0: सही बात।
1: और मैं फिलहाल अपने पीएचडी के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, तो शायद मैं इसी के साथ मीडिया हिंदी को साथ में कंबाइन करके कुछ इसके ऊपर शोध कार्य करने की मेरी इच्छा है।
0: बिल्कुल, एक बहुत बहुत ही बड़ा कार्य है, आसान नहीं होता, बट डेफिनेटली हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज। और इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी आयशा, आपका लाइफ में रोल मॉडल कौन रहा है?
1: मेरी मम्मी और मेरी नानी। जैसे मैंने कहा मेरी माँ एक सिंगल मदर है, तो एक सिंगल मदर के लिए एक बच्चे को माता और पिता दोनों का प्यार देना
0: आसान नहीं,
1: ये बहुत कठिन होता है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने कर दिखाया, और आज मैं सशक्त नारी के रूप में खड़ी हूँ उनके बदौलत। उन्होंने हमेशा सिखाया कि सपने देखो, और सपने देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन सपनों को साकार कैसे करना ये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग सपने देखते हैं लेकिन उन सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं, और सपने को साकार करना ही उन्होंने सिखाया, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कि जैसे कि आपने कहा कि कॉटन में नहीं रखना है किसी को, कंफर्ट जोन के बाहर आके सोचिए, कंफर्ट जोन के बाहर आके एक्शंस लीजिए, तभी आप सशक्त बन पाएंगे। तो ये मैंने अपने मम्मी से सीखा, वो बहुत बहादुर नारी है।
0: बिल्कुल, आपके शब्दों से ही ये झलक दिखाई देती है और आपकी छवि होगी, या बिल्कुल मैं समझती हूँ आप उन्हीं की परछाई, और बेशक जैसे आप हैं एक तरह से देखा जाए तो आप आज, अगर आपकी मम्मी आपको अभी लाइव देख रही होंगी तो वो बिल्कुल छाती उनकी फूल गई होगी और गदगद हो गई होगी डेफिनेटली। और मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी आयशा, आपके भविष्य को लेकर क्या प्लान्स हैं?
1: जी भविष्य को लेकर, जैसे मैंने कहा मेरा झुकाव ज़्यादा फिल्म सिनेमाटोग्राफी के ऊपर है, तो मैं उसमें और जाना पसंद करूँगी और आगे सीखना चाहूँगी, और मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ।
0: कहानी लिखती हैं?
1: हाँ,
0: आपने कुछ लिखा है?
1: पोएम्स भी लिखती हूँ।
0: ओहो,
1: हाँ, मेरे पास है एक।
0: ओके, चलिए आज आज मतलब राज खुल रहे हैं धीरे धीरे करते हुए। उन्होंने कहा अध्यापिका, फिर कहा एक्ट्रेस बनी है, फिर कहा कैमरा वुमेन बनी है, और अब कहानी लेखन और पोएम। तो चलिए मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आयशा, अब तक आपने कुछ लिखा है? हम ज़रूर चाहेंगे कि आप कुछ हमें पढ़कर सुनाएं।
1: जी मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे ये शेयर करने का मौका दे रही हैं। तो अकेली नहीं अडिग हूँ, पतली सी काया छोटे से कदम, लेकिन हौसलों का था विशाल सा दम। एक अकेली माँ की गोद में पली, संघर्षों की धूप में हर रोज ढली, बचपन से उसने एक शब्द सुना अकेली, दुनिया ने मानो यही पहचान दे दी, पर उसने उसी शब्द को अपना ताकत बनाया, हर ताने को अपने सपनों में ईंधन बनाया। जब हाथ में कैमरा लेकर वह निकली, राहें आसान नहीं थी, मुश्किलें थी कई, लोगों ने कहा यह क्षेत्र तुम्हारे लिए नहीं है, पर उसने ठान लिया रुकना मुझे कभी नहीं। सेट पर भीड़ में रोशनी के बीच उसे अपनी जगह बनाने में लगा वक्त असीम, हर दिन खुद को साबित करना पड़ा, हर नज़र के सवालों से लड़ना पड़ा। वह जानती थी कि उसकी ताकत शरीर में नहीं, उसके साहस, उसके विश्वास और उसके ज़मीर में थी। छोटी सी दिखने वाली उस लड़की के भीतर एक योद्धा हर दिन जगता था निरंतर। उसे प्रेरणा मिलती थी उन वीरांगनाओं से

0: जो हमारे धर्म ग्रंथों की आयाध्यों में है। कभी माँ दुर्गा का साहस बन जाती, कभी माँ काली की निर्भीकता अपनाती, कभी सीता माता की धैर्य शक्ति से सीखती, तो कभी द्रौपदी की आत्मसम्मान की अग्नि से जीती। जब दुनिया ने कहा डरो, उसने कहा मैं लड़ूंगी। जब दुनिया ने कहा तुम नहीं कर पाओगी, उसने कहा मैं करके दिखाऊंगी। आज वह सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाती, वह सपनों को नई दिशा दिखाती, हर फ्रेम के साथ एक संदेश देती कि स्त्री शक्ति उसकी पहचान से नहीं, उसके आत्मविश्वास से बनती है। उसका सपना सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा बनाना है जो पहले कभी ना हुआ हो। वह अलग बनना चाहती है, अपनी राह खुद गाढ़ना चाहती है और उस सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल बनना चाहती है। जो कभी खुद को कमज़ोर समझ बैठी है, उसकी कहानी कहती है अगर एक अकेली माँ की बेटी सिर्फ अपने विश्वास के सहारे हर बाधा को पार कर सकती है, तो कोई भी अपने सपनों की उड़ान भर सकती है। वह कैमरे के पीछे खड़ी एक महिला नहीं, वह साहस, संघर्ष और प्रेरणा की जीवित तस्वीर है और उसकी सबसे खूबसूरत तस्वीर अभी बननी बाकी है।
1: ओहो, आपने तो दिल जीत लिया। आयशा, आपकी आंखों में बिल्कुल वो नमी दिखाई दे रही है और आपके हर शब्द में वो जो ऊर्जा हमने महसूस की। और यूं ही कोई रोंगटे खड़े नहीं होते, क्योंकि कहते हैं ना कुछ बातें ऐसी होती है जब तक आपका दिल ना वो छुए तो भाई ये असर आपको फील नहीं हो सकता। और आयशा, आपने पूरी कहानी आज इस छोटी सी कविता के माध्यम से अपनी पूरी जिंदगानी आपने बयां की। हम सच में हम निशब्द हैं, पर कुछ भी कह लो, आप बहुत महान हैं, बहुत सशक्त हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। और मैं ज़रूर उस माँ को प्रणाम करना चाहूँगी जिन्होंने आप जैसी बेटी पाई, और सच में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आयशा, आज के इस कार्यक्रम में मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अब तक आप कैमरा के पीछे ज़्यादातर वक्त बिताती हैं, कैमरा के पीछे या कैमरा के सामने कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है?
0: जी, चूँकि मैंने दोनों किया है तो दोनों चैलेंजिंग है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कैमरे के पीछे हैं तो ये ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम होता है। क्योंकि मान लीजिए एक एक्ट्रेस है
1: जी,
0: उनके एक्सप्रेशंस कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर कैमरे के पीछे वाला व्यक्ति अगर वो सही तरीके से उस कहानी को बयान ना कर पाए, उस कहानी को फ्रेम ना कर पाए, तो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। क्योंकि एक कैमरा पर्सन का ही काम होता है उस कहानी को अच्छा फ्रेम देना और एक दिशा देना कि किस दिशा में जाना है। जैसे हमारे शॉट्स बहुत तरीके के होते हैं, मीडियम शॉट, क्लोजअप शॉट, अमेरिकन शॉट्स, तो किन शॉट्स का प्रयोग कब करना चाहिए ये कैमरा ऑपरेटर को पता होता है। चाहे सामने वाली है वो अच्छा भूमिका निभा रही है, अपना रोल अच्छे से कर रही है, लेकिन अगर आप पीछे से वो शॉट्स नहीं ले पा रहे हैं जो ज़रूरी हो और सही समय पर, तो फिर व्यर्थ चला जाता है। तो मेरा
1: मतलब वो एक तरह से वो पिक्चर में जान डालनी है और हर एंगल का शॉट कहाँ कौन सा फिट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी आयशा बालक, जो कि बालक तो नहीं, बालिका तो नहीं, पर एक इंस्पिरेशन है। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आयशा आज का आखिरी सवाल कि हमारी जितनी भी महिलाएं हमारे साथ, जितने भी श्रोता इस वक्त जुड़े हुए हैं, और जो महिलाएं खासकर कैमरा वुमेन बनना चाहती हैं या जीवन में आगे कुछ करना चाहती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मेरा संदेश यही होगा कि आप कभी अपने आप को कम ना समझिए और अपने आप को बाउंड्रीज में सेट मत कीजिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारा पैदा होने का मोटिव क्या था। हम पैदा हुए सिर्फ एक वाइफ या मदर बनने के लिए नहीं, हमारे भी अपने अरमाने हैं, सपने हैं, ज़रूरतें हैं जिनकी पूर्ति हमारे हाथ में होती है, जिनकी पूर्ति हमें करनी होती है। तो हमें अपनी पहचान इससे हटके करना चाहिए, साथ में लेके चलिए सब कुछ। एक आप अच्छी बीवी भी बन सकती है, अच्छी माँ भी बन सकती है, और साथ में सशक्त नारी भी बन सकती है, एक प्रेरणा भी बन सकती है, और अपने अरमानों की पूर्ति भी कर सकती है, साथ साथ में अपने सपनों को पूरा भी कर सकती है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि

0: ये हमको लेट गो, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को जाने देना चाहिए कि ये हमारे लिए था नहीं, तो हम किसी और चीज़ पे शिफ्ट करें. उसी चीज़ पे अटके नहीं रहना चाहिए, हमेशा ग्रो करना चाहिए, सीखना चाहिए कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं तो उसको हम अब एम्ब्रेस करें. हाँ, नई अपॉर्चुनिटी को ले. और सपनों से डरना नहीं चाहिए, सपनों का पीछा करना चाहिए, है ना, कि हाँ ये मुझे हासिल करना है तो हम नहीं कर पा रही हूँ अभी, कोई बात नहीं, कुछ समय बाद मैं इसको करूँगी, लेकिन ज़रूर करूँगी. क्योंकि
1: वो ज़िद होनी चाहिए,
0: वो ज़िद होनी चाहिए, वो जुनून होनी चाहिए. क्योंकि मेरा मानना है कि जब मैं मृत्यु के समय मतलब पहुँचूँगी तो मैं अपने आप से कहूँगी कि मैंने क्या अचीव किया ज़िंदगी में, कि मैंने
1: अफसोस नहीं रहना चाहिए
0: कि अरे मेरा मुझे ये करना था लेकिन मैं वो कर नहीं पाई सिचुएशंस की वजह से, परिस्थिति की वजह से. कोई बहाना नहीं चलता है.
1: बिल्कुल सही.
0: अगर आपको करना है तो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे आप उसको कीजिए, क्योंकि आप नारी हैं, आपको तो डिवाइन एनर्जी दी गई है, डिवाइन शक्ति दी गई है. आप दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, तो इसका प्रयोग कीजिए. हमारे ऊपर माता रानी की कृपा है, तो हम उसको ज़ाया क्यों करने दें, है ना. हम प्रकृति में हम लोग जन्म देते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है,
1: वो शक्ति है,
0: तो फिर सपनों को पूरा करने के लिए क्यों नहीं.
1: बिल्कुल बिल्कुल. हम अगर हम एक जीवन दान दे सकते हैं, जीवन देते हैं किसी को, तो बिल्कुल हमारे अंदर वो शक्ति है, पर कई बार हम भूल जाते हैं. तो ये थी आयशा, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही सशक्त और बहुत ही इंस्पायरिंग. उनके हर शब्द में इतनी स्पष्टता और बिल्कुल अपने सपनों को साकार करने का जुनून. बिल्कुल, आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं समाप्त करेंगे. हमारी टेक्निकल टीम पर हमारे साथ बने यज, साथ थी दीपशिका और रितेश मोहाबिया, और जितने भी फॉलोअर्स, जितने भी दर्शकों ने, जितने भी श्रोताओं ने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद. और ख़ास कर धन्यवाद करना चाहेंगे आयशा का, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी प्रोडक्शन टीम को. और इसी के साथ बस आशा करते हैं कि आपके सभी सपने साकार हो. नमस्ते.
0: आपका बहुत धन्यवाद रत्ना जी, और रेडियो मनोरंजन को और ज्यादा धन्यवाद.
1: बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक और नई उड़ान की कहानी को लेकर. तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति. नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को.
2: उड़ान की कहानी.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य खतरों के चलते मॉरिशस अपनी निगरानी और मजबूत कर रहा है। सर शिव सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई अड्डे के जिम्मेदारानों के साथ इबोला के शकी मामले के चलते एक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया। तीन तरह की हालत का तस्वीर किया गया। मंत्री अनिल बिच्चू ने इस कार्रवाई पर तसल्ली जताते हुए बताया कि मॉरिशस अब इबोला के संदर्भ में किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। सरकार मॉरिशस में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के सिलसिले में एक ढांचा कायम करने का मकसद रखती है ताकि ऑनलाइन जुर्मों से बचा जा सके। बहुत जल्द सलाह मशवरों का सत्र शुरू किया जाएगा और यूजरों की पहचान के लिए एक वेरिफिकेशन प्रणाली स्थापित की जाएगी। कैबिनेट में इस परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है। पुराने वित्त मंत्री रंगाना देन पर्याच और पुराने श्रम मंत्री सुदेश कालीचरण से FCC में पूछताछ की जा रही है। ये तहकीकात पेट्रोली पैदावारों को लेकर 30 बिलियन रुपए के सिलसिले में की जा रही है। विदेश में ईरान और अमेरिका के बीच तय समझौते के संदर्भ में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके बावजूद ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलेगा। वो फ्रांस के G7 शिखर वार्ता में बात कर रहे

0: ये थी। और फुटबॉल की बात करें तो आपको बता दें कि ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मैच ड्रो रहा है, जो कि 2-2 रहा, और सऊदी अरब ने यूरुग्वे के साथ खेला और ये मैच भी ड्रो रहा, 1-1 स्कोर है। और आज रात 11 बजे फ्रांस और सेनेगल के बीच मुकाबला होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। मौसल माहौल बेलर व्यासश में 79 साल की 79 years old श्रीमती तारामती मुखलाल। श्रीमती तारामती मुखलाल पैदाइशी नाम रामलोचन, जो बिंदोई के नाम बिंदु के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल एक बजे इनके बेटे धनराज मुखलाल के घर मौसल माहौल बेलर व्यासश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालूसी बिल्डिंग बेलर व्यासश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। सिनिवासन रोड डर्निंगम त्रियोले में 64 साल के 64 years old श्री उमानंद लक्ष्मण, श्री उमानंद लक्ष्मण जो मानंद पेप्सी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम चार बजे इनकी पत्नी अमृता लक्ष्मण के घर सिनिवासन रोड डर्निंगम त्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनुस त्रियोले की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें आज की चर्चा इस कार्यक्रम को इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर, साथ ही इसे आप लाइव देख पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी। और आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो आज के समय के लिए या आज के समाज को जो है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तो 16 जून है, कल 15 जून था और कल एक बहुत ही विशेष दिन मनाया गया, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, यानी कि विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। और हम हमारे बुजुर्गों की बात करें तो हमारे समाज में बुज़ुर्गों की जो संख्या है वो काफ़ी है, और हमारे सोसाइटी में बुज़ुर्गों का मान सम्मान करना हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का एक हिस्सा रहा है। बुज़ुर्ग जो है सिर्फ हमें जो है हमें हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों के बारे में ही नहीं बताते हैं, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में जो है उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आज जो भी खुशहाल जीवन हम कहीं ना कहीं व्यापन कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की देन है, क्योंकि जो संघर्ष उन्होंने किया उसी के चलते आज जो है हम इस खुशहाल जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और जब उनके हक की बात आती है तो कहीं ना कहीं इस दिन को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। तो आज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे पर हम चर्चा करेंगे, और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच मिसिज नाविनी रामनियाल जी जुड़ चुकी है। नमस्कार मिसेज रामनियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिसेज रामनियाल की बात करें तो वो एक सोशल वर्कर है, काफ़ी एनजीओस के साथ काम करती है, काफ़ी सोशल इश्यूज के बारे में जो है ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर देश के कोने कोने में जाते हैं, लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हैं। और ख़ासकर बुज़ुर्गों की बात करें तो इनका अपना एक एनजीओ भी है, बी अवेयर, जो ख़ासकर बुज़ुर्गों के हक के लिए कार्य करता है, जहां पर बुज़ुर्गों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, बुज़ुर्गों के प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाता है, उनके हक के बारे में उन्हें बताया जाता है, और कहीं अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो ये उनके लिए कार्य करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिसेज नाविनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज का विषय बहुत ही विशेष है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे बुज़ुर्ग कौन है।
5: ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। नमस्ते सभी दर्शकों के लिए। बुज़ुर्ग कौन है? आज जो हमारा अस्तित्व है, आज जो हम हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग के सैक्रिफाइस

0: से, उनके काम से, उनके संघर्ष से आज हमारा आज है
1: जी।
0: वो जो हमारे अपनेपन है इस देश में, हम मिल के रहते हैं, साथ में रहते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, ये सब किसने शुरू किया ये तो हमारे बुजुर्ग ने से

0: जैसे कि एक गांची होती है, अगर मैं अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो वो जरी हैं
1: जी।
0: अगर होता है अभी विंटर में आप देखेंगे कि कभी कभी थोड़ा पेड़ वो सूख जाता है, सभी जो पत्ते झड़ने लगते हैं, फूल झड़ने लगते हैं, फ्रूट झड़ने लगते हैं, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि वो फिर से हरा भरा हो गया। क्या क्या किसने उनको सहायता दिया है, वो जड़ी है,
1: क्योंकि जड़ें मजबूत
0: हैं। तो हमारे बुजुर्ग क्या हैं, वो जड़ी है। अगर एक घर में बुजुर्ग चले जाते हैं तो वो घर बिखर जाते हैं, बच्चे एक बगल चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होते हैं, तो वो बुजुर्ग हैं जो सब संभाल के रखते हैं। तो बुजुर्ग का जो, और इसी स्थान उनको देश में भी होता है। सिर्फ सोचिए कि अगर देश में बुजुर्ग नहीं होते तो हमारा देश क्या होता।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, खासकर मॉरिशस जैसे देश की हम बात करें, जहाँ पर जो है मजदूरों को लाया गया था, उन्होंने इतना संघर्ष झेला है, एक कठिन जीवन शैली थी उनकी, इतना संघर्ष करके ये देश जो आज सोने जैसा चमक रहा है, कहीं ना कहीं उन बुज़ुर्गों की ही तो देन है। अगर वो मेहनत, वो परिश्रम नहीं करते तो आज उनकी ये जो पीढ़ियाँ है यहाँ पर, वो इस तरह का सफल जीवन नहीं व्यतीत कर पाते। तो कहीं ना कहीं हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और आपने जिसे कहा, वो हमारी जड़ें हैं, वो हमारी नींव है, और अगर हमारी नींव ही कमजोर होती है तो उसके ऊपर हम इमारत तो खड़ी नहीं कर सकते, है ना।
0: अवश्य, और यही समझाने के लिए हम यहाँ पर हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जब तक वो हैं, हमें उनका आभारी करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने कहा है, जितना सैक्रिफाइस उन लोगों ने किया है, जो हमारा देश है भरा भरा हैं, उन्हीं के बदौलत हैं।
1: जी बिल्कुल। और बुज़ुर्गों की बात करें तो समय के साथ हमारे जो है बुज़ुर्गों की अहमियत को थोड़ा सा कम आका जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि चारों ओर ऐसा है, कभी कभार हम ऐसे केसेस देखते हैं, ऐसे सिनेरियोज हमारे सामने आते हैं, कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों का सिर्फ परिवार तक उनकी अहमियत नहीं है कि बच्चों का पालन पोषण करते हैं, फिर दादा दादी के रूप में अपने नाती पोतों को देखते हैं, वहीं पर समाज में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कभी कभार सामाजिक स्तर पर उनकी सलाह, उनकी राय हमारे बहुत काम आती है। और यही सलाह, यही राय सिर्फ सामाजिक स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि देश मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका योगदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि कभी कभार हमें कभी ऐसे चीज़ की जानकारी चाहिए होती है, कभी ऐसे चीज़ के बारे में जानना होता है जो हमारे समय का नहीं है, पहले का है, तो ऑब्वियसली हम अपने बुज़ुर्गों की ओर ही जाएंगे ना। तो इसलिए जो है बुज़ुर्गों का बड़ा ही जो है महत्व है। तो चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे, बुज़ुर्गों के हक के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से पहलू जुड़ते हैं।
0: जी, हक से पहले हम आज की चर्चा जो है
1: जी,
0: जो अवेयरनेस एल्डरली अब्यूज अवेयरनेस डे क्यों मनाते हैं, क्यों इसका आपकरण हुआ है, क्यों हम ये दिन है
1: जी।
0: देश में और इंटरनेशनली
1: इसे क्यों मनाया जाता
0: जी
1: है?
0: जी, 10 बुजुर्ग में एक बुजुर्ग के ऊपर अब्यूजर्स होते हैं, अत्याचार होते हैं, और हमारे देश में इनका संख्या 5 तक होता है,
1: यानी कि विश्व स्तर पर 10 में से एक बुजुर्ग पर जो है। और यहाँ पर हम अगर बात करें तो 10 में से 5
0: क्यों 5 होता है, ये अभी कल ही मैं रेडियो पर सुन रहा था, न्यूज बोल रहे थे कि मॉरिशस में जनवरी से अभी तक 600 से ज्यादा अब्यूजर्स पुलिस को
1: रजिस्टर
0: किया। इसका मतलब है कि हर महीने कम से कम 100 ऐसे अब्यूजर्स
1: केसेस
0: रजिस्टर्ड होते हैं हमारे बुजुर्गों पर। तो ये अलार्मिंग है, क्योंकि अभी जहां हम जी रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, अगर ये ऐसे ही बढ़ता जाए हमारे देश, अभी हम एक एजिंग पॉपुलेशन में पहुंच गए हुए हैं, अगर हम ऐसे ही चलता जाए तो बहुत अब्यूजर्स और इंक्रीज हो जाएगा हमारे देश में। और इसका मतलब है कि जो अभी के नव युवक हैं, उनको फिर से समझाना पड़ेगा कि आप अपने बुजुर्ग के पति

0: कैसे व्यवहार करी।
1: जी जी, कहीं ना कहीं बुजुर्गों के प्रति व्यवहार की बात करें तो हम देखते हैं आजकल समाज में इसको लेकर काफ़ी एक चिंताजनक जो है स्थिति पर हम पहुंच गए हैं। एक तो सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि आजकल जो है न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन आ चुका है, मतलब कि बच्चे शादी कर लेते हैं तो अलग हो जाते हैं अपने माता पिता से, फिर जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए जो है बुज़ुर्गों का साथ नहीं होता है, शायद वीकेंड में जाते होंगे अपने नाना नानी या दादा दादी के पास। तो ऐसे में जब छोटे बच्चे अपने बुज़ुर्गों के संरक्षण में नहीं हैं तो वो संस्कारों की कमी हमें नज़र आती है, वो व्यवहार में जो है वो सम्मान की कमी हमें नज़र आती है। और किसी भी बुज़ुर्ग की बात करें, अगर उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, एक समय 10-10 बच्चों को जब वो पालते थे तो बदले में शायद वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं कि हम उनसे उनका सम्मान करें, प्रेम से जो है उनके साथ रहे और अपनेपन का व्यवहार उनके प्रति रखें।
0: जी, हमारे बुज़ुर्ग, अभी के बुज़ुर्ग सिर्फ वक्त मांगते हैं हमसे, दो बोल, खुशी के बोल, प्यार के बोल बोल दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन यही प्रॉब्लम हो रहा है आज के दौर में, सभी को काम करना चाहिए क्योंकि जो जिंदगी है वो आसान नहीं है, काम
1: पहले जैसे नहीं है।
0: लेकिन कम से कम आप अपने जिंदगी में, आप अपने प्लानिंग में 5-10 मिनट अपने बुजुर्गों के लिए निकालिए, तो वो जो आपको समझाएंगे, जो बोलेंगे, वो 10 मिनट के जो आपको विद्या देंगे, वो आपने दिन भर के थकान दूर कर हो जाएगा।
1: जी, चलिए, आप बता रही थी कि आज के इस दिन को क्यों मनाया जाता है, उस पर हम चाहेंगे आप थोड़ी सी जानकारी दें।
0: जी, हमारे जैसे हमने स्टैटिस्टिक के लिए कहा है कितने नंबर के बुजुर्ग को अब्यूजर्स हो रहा है, वो क्या है कि हमारे बुजुर्ग ने कभी भी एक लिमिट नहीं रखा है, वो सिर्फ देना जानती हैं। बचपन से अपने परिवार को खुश रखने के लिए, फिर बाद में पति को, फिर पत्नी को, फिर बच्चे को, फिर बाद में जो बच्चे आते हैं, बच्चे के बच्चे को देना आते हैं, वो सिर्फ प्यार देना
1: जानते हैं।
0: लेकिन उनके जो लिमिट है वो कभी भी नहीं डाला, इसीलिए हम नहीं सोचते हैं कि वो क्या क्या फील कर रहे हैं। ऐसे बात कर दिया कि तुम नहीं आ सकते हो, हम कभी भी सोचते नहीं हैं वो बातचीत जो हमने किया है उनसे, वो किधर कैसे उनको बुरा लगा, क्या असर हुआ, और हमें वो बात करना चाहिए था कि नहीं, लेकिन ऐसे हो जाता है। और अब्यूजर्स अभी वो जो हमारे एल्डर्स हैं वो वल्नरेबल है, तो अभी जो हमारे सोशल प्रॉब्लम है देश में, जो ड्रग का प्रॉब्लम है, हमारे एल्डर्स वो सबसे पहले स्थान में हैं और सबसे ज़्यादा वो सफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे पैसे छीनना, उनको ठगना, उनसे वो पैसे लेना बहुत आसान हो गया है। कौन सी दादी, नानी, चाची, मौसी रहेगा कि अपने बच्चों को जैसे आप
1: कुछ मांगे तो
0: नहीं देंगी। ये डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए समझने को कि मैं ये कर रही हूँ तो ये बुरा रास्ता ले सकता है। वो कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा यही सोचता है कि मैं अपने बच्चों को मदद करूं, वो
1: मतलब
0: आगे
1: बढ़े। उनकी जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव है। वो ये नहीं जानते कि बच्चा अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो उसका कैसे इस्तेमाल करेगा, क्या वाकई में उसकी जरूरत है या अपने किसी बुरी आदत के लिए वो पैसे मांग रहा है, या अपने किसी बुरे शौक को पूरा करने के लिए पैसे मांग रहा है।
0: यही
1: और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पैसे मांगने पर, न मिलने पर, हम देखा है कि उन पर अत्याचार होता है, पैसे छीन लिए जाते हैं या उनको किसी कारणवश तरीके से जो है शारीरिक रूप से भी जो है उनको नुकसान पहुंचाया जाता है।
0: वैसे तो 6 अब्यूजर्स हैं एल्डरली पर। पहला है वर्बल, आप बुरा बात बोलेंगे, ये वर्बल, फिजिकल, मार खाते हैं, हाथ उठाते हैं अपने बुजुर्ग पर। थर्ड है फाइनेंशियल, जो बुजुर्ग उसके पैसे ले लेते हैं, चोरी कर देते हैं, उसके कार्ड लेके जाके पैसे निकाल देते हैं। और

0: होता है जो नेग्लिजेंट हैं, बुजुर्गों की ध्यान नहीं देते हैं, उसे एक बगल में रख देते हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनका ध्यान नहीं देते हैं, और सबसे ज़रा इमोशनल, जैसे हम अपने माता जी से प्यार करते हैं तो हम बोलेंगे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तो मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो,
1: इमोशनल
0: ब्लैकमेल ये भी बहुत चलता है कि मैं तुम्हारा बेटी हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान देती हूँ, तो मुझे ये चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अगर तुम मुझे ये नहीं देंगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, तो वो डर जाते हैं अगर मैं अकेले पर जाऊँगी तो दे दो, तो ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल भी होता है। लेकिन मॉरिशस में अभी सबसे बड़ा अब्यूज़ है फाइनेंशियल, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जैसे पैसे निकालने के लिए अपने बुजुर्ग से, और वैसे तो पैसे नहीं है हमारे बुजुर्ग के पास, जो पेंशन मिलते हैं अभी तो सब चीज
1: मतलब कि उन खर्च हो जाता है,
0: क्वाइट यस खर्च हो जाता है, उनके जो मेडिसिन ही जो वो कीनते हैं वो बहुत अभी एक्सपेंसिव हो गया है, तो उससे पैसे रखने के लिए कितने तरह के जो नुस्खाने हम बोल सकते हैं
1: जी,
0: बच्चे अभी यूज कर रहे हैं ये आप सोच नहीं सकते हैं।
1: बिल्कुल, चलिए हमारे जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि कल जो है 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया, और आज इसी विषय पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए एक गीत के साथ हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

चर्चा ये प्रोग्राम आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज खासकर हम वर्ल्ड एल्डर अब्यूस अवेयरनेस डे पर बात कर रहे हैं। और हमारे बुज़ुर्गों की बात करें तो समय के साथ जो है इनके प्रति जो व्यवहार है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। समय के साथ उनके प्रति जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। और बुज़ुर्गों की बात करें तो वे हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे देश का एक अनमोल हिस्सा है। उनके अनुभव, उनका ज्ञान जो है हमें, हमारे जीवन को दिशा प्रदान करता है।

0: उसमें काफ़ी बदलाव आया है समय के साथ, उनके प्रति जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। और बुज़ुर्गों की बात करें तो वे हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे देश का एक अनमोल हिस्सा है। उनके अनुभव, उनका ज्ञान जो है हमें, हमारे जीवन को दिशा प्रदान करता है, उससे जुड़ी हुई है, खासकर बुज़ुर्गों के लिए कार्य करती है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, जब भी आप फील्ड पर जाती हैं तो मॉरिशस में किस प्रकार के केसेस आपको ज़्यादा नज़र आते हैं बुज़ुर्गों के पर जो हो रहे हैं अत्याचार, उस पर अगर हम बात करें तो?
1: ये हमने ये एनजीओ ही इसीलिए शुरू किया क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो हम देख रहे थे कि जो बुज़ुर्ग हैं वो खुद के अंदर ही सफ़र करके जी रहे हैं।
0: okay.
1: तो हमने कहा, आप ऐसे क्यों जी रहे हैं? वो आपसे ऐसे बर्ताव कर रहा है, आप पुलिस की पास क्यों नहीं जाते हैं? आप अपने दुख को ऐसे ही सफ़र कर झेल रहे हैं, और कभी कभी हम वो इतना झेलते हैं कि उनकी मौत तक हो जाती है,
0: बीमार पड़ जाते हैं।
1: और मैं सोचती हूँ कि जो आदमी शुरू से इतने तकलीफ करके, इतने सैक्रिफाइस करके, इतने हार्ड वर्क करके अपने बच्चों को इधर तक लाया, और आज जब वो उनका जब बुरा वक्त आ रहा है तो बच्चे उसके करीब रहना चाहिए, तो वो ऐसे दौर पर गुजर रहे हैं। तो हमने कहा, नहीं, हम थोड़ा अवेयरनेस करेंगे, उन लोगों को बोलेंगे कि अगर आप 5 बच्चे 10 बच्चे को पाल सके तो आप खुद का ख्याल क्यों नहीं रख सकते हैं? कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम बोलते हैं नहीं, हमको बच्चे चाहिए बुरा वक्त में, जब हम बुरा हो जाएंगे तो हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे पास हैं। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हो सकता है कल हमारे बच्चे देश में नहीं हैं तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये तैयारी हमारे बुजुर्ग नहीं करते हैं।
0: हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही। कभी कभार ऐसा होता है कि चलो बच्चे यहाँ हैं, नहीं देख रहे, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन कभी कभार ऐसे होते हैं कि बच्चे अपने बेहतर भविष्य के लिए देश के बाहर जाते हैं कामकाज करने के लिए, क्योंकि उनको भी जीवन आगे ले जाना है ना, क्योंकि तो ऐसे में बुजुर्गों को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। ये कि हम बैठ कर उम्मीद करें कि कोई आएगा हमें देखे हमारा ख्याल रखेगा, उससे अच्छा ऐसा करें कि हम खुद ही अपना ख्याल रखना सीख ले, क्योंकि ये तो हम हमेशा से करते ही आए हैं ना। तो फिर एक उम्र में हो आकर हमें वाकई में लगता है, देखो ना, ये तो आम सी बात है, एक ह्यूमन इमोशन कहे या साइकोलॉजिकली हर कोई ऐसा है कि हम थोड़े से कमजोर होते हैं, बीमार होते हैं, तो लगता है कि कोई हमारा ध्यान रखे, कोई हमारे लिए कुछ करे, खाने पीने का हमें पूछे। ये मानसिक तौर पर हर व्यक्ति करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर अपने आप को स्ट्रांग रखना भी जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे सामने कैसे हालात आ जाएंगे। कल को हम अकेले पड़ गए तो हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी कि कुछ ज़रूरी फ़ोन नंबर्स है जो हम अपने पास रखें, कुछ ऐसे ज़रूरी कॉन्टैक्ट्स है जिसके नंबर हमारे पास होने चाहिए, या चलो घर में बच्चे नहीं हैं लेकिन आसपास कोई पड़ोसी है जिसे किसी ने बोल कर रखा है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहना, अगर आपको लगे कुछ ठीक नहीं है तो उनके परिवार को थोड़ा सा बता दे। तो इन सब बातों के अलावा क्या क्या और जो है आप और केसेस देखते, जैसे आपने कहा वो घुट कर जीते हैं, नहीं कहते हैं, इसके अलावा
1: जैसे मैंने कहा है, जो अगर आपके आपके पड़ोसी में, गाँव में, या आप जहाँ रहते हैं, एक ड्रग एडिक हैं उधर, जो बच्चे हैं, आपको डबल प्रिकॉशन लेना पड़ेगा क्योंकि वो उन्हें खुद अपने तकलीफ से गुजर रहा है वो आदमी, तो आप उसमें मत इन्वॉल्व मत होइए। जब तक आप सके आप दूर रहिए, क्योंकि आपको, और एक बात मैं स्पर्श करना चाहती हूँ, ये क्या होता है, हमारा बुजुर्ग समझते नहीं हैं कि वो अभी उम्र में हो गए हैं, उनका जो शक्ति है वो थोड़ा कम हो रहा है, उनका जो देखने का, उनका जो सोचने का, जो बातचीत करने का,
0: फिजिकली फिट नहीं है,
1: और ये कभी कभी वो समझते नहीं हैं, और वो जाके आगे बढ़ जाते हैं
0: मदद के लिए।
1: तो वो क्या है, जब वो आगे बढ़ जाते हैं मदद के लिए, कभी कभी वो खुद
0: मुसीबत
1: में पड़ जाते हैं। इसीलिए हम ये शुरू किया है अवेयरनेस करने के लिए, समझाते हैं हमारे बुजुर्ग को कि आप क्या हैं, क्या थे, क्या हो गए और क्या होने वाले हैं। तो पहली चीज

0: ये है कि आप खूब खुद को अपने आप को देखिए, आप खुद को खुशी रखिए, खुश रखिए अपने आप को। हम पूछते हैं उनसे, आपके बड़ा दोस्त कौन है, आपसे सबसे ज्यादा दोस्त आप किससे सबसे ज्यादा चाहते हैं, करीब हैं। कभी कभी वो कहते हैं पत्नी या बच्चे या छोटे बच्चे, तो हम उन्हें समझाते हैं कि आप अपने आप के सबसे बड़ा दोस्त हैं। तो जो आप खुद को खुशी कर रखेंगे, खुश रहेंगे, तो बहुत चीज हो सकता है।
1: बिल्कुल। और आपने एक दो पॉइंट्स जो जोड़े वो भी वाकई में सोचने चाहिए, मतलब कि आप जहाँ रहते हैं आपके आसपास का माहौल कैसा है? अगर आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि आए दिन ड्रग के केसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, या कोई ड्रग एडिक्ट आसपास घूम रहा है, या आपको नहीं पता, तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अनजान लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि बुजुर्गों के पास कोई भी मदद के लिए चला जाता है तो वो तो साफ दिल से आपकी मदद के लिए आ जाते हैं, तो पर लेकिन नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति किस नियत से आपकी ओर आ रहा है और किस तरह से आपको हानि या नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए खासकर अनजान व्यक्तियों से आप बचकर रहे, जिनको नहीं जानते हैं, मतलब कि उनको खुलकर मिले नहीं या दूरी बनाए रखे, कि कभी कभार होता है ना कि कुछ लोग कुछ जानकारी लेने के बहाने से आ जाते हैं आपसे कुछ पूछने या मांगने या बोलने, और वो किस तरह से फिर आप पर कुछ कर दे या कोई आपको नुकसान पहुंचा दे आपको नहीं पता। इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और हम एक और बात मानते हैं कि आजकल बड़े बुजुर्गों की बात करें तो उनके बच्चे तो काम करने जा रहे, छोटे बच्चे तो स्कूल में जा रहे, तो ज्यादा समय उन्हें अपनों के साथ नहीं मिलता है। लेकिन जैसे आपने कहा, वो खुद से दोस्ती कर ले, उसके अलावा वो अपने जैसे लोगों से, जैसे अपने हम उम्र के लोगों से, क्योंकि उनकी कोई सहेली है जो घर के पास रहती है, या अन्य घर के परिवार के जो सदस्य है, हम उम्र है, तो क्या हुआ दिन में थोड़ा सा मिल लिए, बात कर लिए, तो आपका समय भी बीत जाता है, आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होता है। ये भी बहुत जरूरी है।
0: जी अवश्य, आपको खुद को जैसे कनेक्ट करना चाहिए। जैसे अभी तो सभी गांव में शहरों में भी एल्डरली के लिए एक एसोसिएशन है, आप जाइए उधर, आप भेंट कीजिए, मैं उधर वो बातचीत करते हैं,
1: एक्टिविटीज
0: होती है, और आप अपने आप को जिंदा रखिए,
1: खुश रखिए।
0: ये नहीं कि आप बुजुर्ग हो गए हैं तो हम सिर्फ अब मौत के इंतजार कर रहे हैं, जब मौत आएगा वो आएगा, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं आप अपने आप को खुश रखिए, ढूंढिए वो क्या हॉबी है। मैं प्लांटिंग करना चाहती हूँ, मुझे कुत्तों बिल्ली से प्यार है, या आप ढूंढिए वो क्या है कि मैं अपनी टीवी से प्यार करती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ। मैं अभी एमबीसी को थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो इतने डिफरेंट प्रोग्राम आप देते हैं दिन भर में, तो हमारे जो सासू माँ हैं वो उसके टीवी का वक्त होता है, और वो उस वक्त हमें जब हम जाते हैं तो वो बोल देते हैं अभी मत आओ क्योंकि अभी मेरा प्रोग्राम का वक्त होता है। तो मैं जो बोलना चाहती हूँ कि आप वो ढूंढिए, वो
1: मतलब कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी देता है ना।
0: हाँ।
1: इससे क्या होता है, आपका अकेलापन दूर होता है। बहुत से लोग हमने ऐसे भी देखे हैं अपने आसपास जो रिटायर होने के बाद या एक उम्र में आने के बाद जहाँ पर अकेलेपन का शिकार हो, उससे अच्छा कुछ सीखने चले जाते हैं ना। क्योंकि हमारे आसपास मॉरिशस में काफी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर लोग जाकर म्यूजिक सीख रहे हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, वो जो रीजनल सेंटर्स है वहां पर बहुत कुछ सिखाया जाता है, बुजुर्गों के लिए काफी एक्टिविटीज होते हैं, योगा वगैरह होता है, हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाते हैं इससे। और उसके अलावा उससे बड़ी बात है कि आप लोगों से मिल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, जब आप बात करते तो आपका मन हल्का होता है, और जब आप अलग अलग जैसे कि लोगों से मिलते हैं तो अलग अलग नई नई बातें सीखने और जानने का मौका मिलता है, तो इससे हमारे मन में जो स्ट्रेस है वो कम होता है ना, डिप्रेशन कम होता है।
0: जी डेफिनेटली। और जैसे मैंने कहा, आप अपने आप को खुश रखिए, जब आप अपने आप को खुश रखेंगे तो आप अपने आप जो वक्त है मेडिसिन लेने के लिए, अभी मैं ये दवाई लेती हूँ तो मैं लूँगी, ये नहीं कि मैं वेट करूँगी मेरी बहू आके देगी, मेरे बेटे आके देगी, नहीं, ये मेरा सेहत के लिए है, तो मैं खुद लूँगी। अभी डॉक्टर जी ने कहा है सवेरे को ये लेना चाहिए, तो लीजिए, वक्त पर खाइए, आप अपने आप को खुश रखिए, नहाइए,

0: अच्छे कपड़े पहनिए और जैसे मैं बोल रही हूँ अपने हॉबी को जिए, क्योंकि वक्त कम है आपके पास। जब वक्त कम होता है आपके पास तो ज्यादा जीना चाहिए। और हम और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्रिकॉशन, जहाँ आप रह रहे हैं आपकी उस सिक्योरिटी क्या है, आपके घर बन है, जैसे कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो आप बीमार हैं अभी तो एम्बुलेंस घर पर आते हैं वो आपको लेके जा सकते हैं, आप बीमार हैं फ़ोन कीजिए, फ़ोन नहीं कर सकेंगे तो अभी एक एप्लीकेशन है सिक्योरिटी जो जो है आप उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, वो उससे एक बटन आप बजाएंगे
1: तो आपको हेल्प
0: मिल जाएगा। तो ये सब है इस देश में।
1: हम अपने बुजुर्गों की बात करें तो ज्यादातर बुजुर्ग जो है टेक्नोलॉजी से बड़े ही आसानी से जुड़े हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके अपने फोन में ऐसी जरूरी जानकारियां रखें कि अगर आप किसी मुसीबत में पड़ जा रही तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको किसे कॉल करना है या सबसे पहले किससे मदद मांगनी है, तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक होती है। एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे नाविनी जी कि अगर हम पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे समाज में किन पर ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप इतना फील्ड वर्क करती है उनके साथ कार्य करती है, तो पुरुषों पर महिलाओं पर किस तरह से आप देखती हैं?
0: आप हंसेंगे, हम महिला सब में आगे ही है, तो इसमें भी महिला आगे ही है। जब आप देखेंगे तो पुरुष थोड़ा कम लेकिन महिला ज्यादा शिकार होती है, क्योंकि महिला के जो दिल है वो हम बोलते हैं ना माँ के दिल, तो वो आसानी से इन सब में पड़ जाती है।
1: Exactly. और जल्दी ही जो है शिकार हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर आज की चर्चा, ये कार्यक्रम आज बुज़ुर्गों पर आधारित है, बुज़ुर्गों पर होने वाले दुर्व्यवहार पर हम चर्चा कर रहे हैं, और एक और गीत के साथ हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं।

0: चलिए आज की चर्चा इस प्रोग्राम में आप अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाविनी रामनियाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक सोशल वर्कर है और समाज में हो रहे विभिन्न इश्यूज पर वो कार्य करती है और खासकर बुज़ुर्गों को लेकर इनका जो है काफ़ी कार्य होता है और बुज़ुर्गों के ही पर जो है आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम बुज़ुर्गों के बारे में बात करें तो किस तरह के कानूनी प्रावधान हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हक के लिए?
1: जी, मैंने अभी बोली थी वो सिक्योरिटी है, एक आप है अपने फ़ोन डालने के लिए
0: जी।
1: तो आप अगर वो नहीं कर सकते हैं तो 999 नंबर आप पुलिस को फ़ोन कर सकेंगे
0: जी।
1: तो वो आपका मदद करेंगे
0: जी।
1: फिर ये भी जानना चाहिए कि पुलिस में एक ऑफिसर डेडिकेटेड हैं जो एल्डरली के लिए हैं
0: okay.
1: तो वो जो भी उस जगह में, उस विलेज में या गांव में या जहां आप रहते हैं,
0: अगर पुलिस स्टेशन में,
1: हाँ, अगर आप अकेले रहते हैं तो आपका नाम उधर दर्ज कर देना तो वो आपको फोन करेंगे या विजिट करेंगे। कम से कम महीने में एक बार
0: okay.
1: वो विजिट करते हैं, सब चीज ठीक है, आप अच्छे हैं
0: okay, एक सर्वे जैसे करते हैं,
1: उसका काम है, डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर है, उसका काम है, वो आते हैं आपको देखते हैं। और हम हमेशा कहते हैं आप कनेक्ट रहना चाहिए, आप अकेले मत रहिए, फोन यूज कीजिए और जो एसोसिएशन है उन लोगों से भेंट कीजिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स आप पर भी निर्भर होता है। ये नहीं है कि जब आप अभी बुजुर्ग हो गए हैं तो आपके कोई भी राइट्स नहीं है, नहीं, जो भी राइट हमारा है आपका भी उतना ही हक
0: है,
1: सबका समान है इस देश में। और जो और आप चुप मत रहिए, अगर आप पर बुरा व्यवहार हो रहा है तो बोलिए, आगे बढ़िए, बोलिए, क्योंकि जो कानून है वो बोलता है कि अगर आप पर बुरा
0: अत्याचार
1: हो रहा है उस व्यक्ति को 2 साल कैद
0: जो कर रहा है
1: और 25,000 जुर्माना
0: पे
1: करना पड़ता है। तो ये सब लॉ है इस देश में, इसीलिए हम आपको एनकरेज करते हैं, आप घुट घुट के मत मरिए, आप आइए बोलिए।
0: पर कभी कभार ऐसा होता है ना, जब हम खासकर अपने बुजुर्गों की बात करते हैं, जैसे कि अगर उन पर कोई अत्याचार हो रहा है खासकर उनके बच्चों द्वारा या उनके अपनों द्वारा, तो वो अपनों के बारे में सोचकर चुप रह जाते हैं और सहते रहते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपको अपने हक के लिए खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी ओर से बोलने वाला कोई नहीं है ना। अगर क्योंकि देखिए ना, सरकारी स्तर पर बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, संस्थाओं की बात करें, तो हर कोई यहाँ पर आपकी मदद के लिए है, आपकी सहायता के लिए है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप नहीं बोलेंगे तो उनको नहीं पता चलेगा, वो आपकी और मदद के लिए नहीं आएंगे। इसलिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है,
1: क्योंकि जब आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा।
0: बिल्कुल सही कहा आप,
1: इसलिए मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, आप अपने आप को खुश रहना सीखिए, कैसे मैं अपने आप को खुश रखना कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रिकॉशन ले सकता हूँ, अपनी सिक्योरिटी, अपने हक क्या हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा है, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अथॉरिटी इवन पुलिस या कोई कुछ आपका मदद नहीं कर सकेगा
0: जी, जी।
1: ये बात होता है।
0: एक प्रश्न मेरा आपसे है कि आप तो ऐसे एनजीओ से साथ काम करते हैं, तो जितने सारे केसेस आपके पास आते हैं, क्या वो निजी व्यक्ति ही आपको कॉल करते हैं या किसी और द्वारा आपको बताया जाता है कि कोई परेशानी में है या कोई दुविधा में है, आपको कैसे पता चलता है?
1: दोनों
0: तरीके से।
1: जब हम अवेयरनेस करते हैं, जो हो सकता है कि उधर वो हमारे अप्रोच करते हैं और बोलते हैं,

0: कि मेरा ये तकलीफ है, आप देखिए थोड़ा बहुत, और मैं फोन नंबर भी छोड़ती हूँ, तो बाद में हो सकता है वो फोन नहीं करेंगे लेकिन उनके जो पड़ोसी हैं वो फोन करें, वो बताएंगे, ऐसे कॉल मिलता है। और भी कॉल मिलता है जैसे उन लोगों ने सुना है कि हम मदद कर रहे, हम मदद क्या मदद कर सकते हैं, हम उन लोगों को अथॉरिटी के जो जो उनका मदद कर सकेंगे उनसे कनेक्ट करते हैं।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल, मतलब कि हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। किस तरह से एक व्यक्ति अगर मुसीबत में है या उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो किस तरह से सब एक साथ आकर उसकी मदद कर पाए, उसका हक जो है उसे दिला पाए। तो चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम के लगभग अंत तक आ गए हैं। और बुजुर्गों की बात करें तो हमारे आज के इस चर्चा कार्यक्रम से काफी बड़े बुजुर्ग जुड़ते हैं। आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप अवश्य अपने लाभ उठाया होगा। और आपसे यही हम कहेंगे कि अपने हक के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइए। अगर आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके बारे में बोलिए। पहले तो चलिए परिवार से बात करने का प्रयास करें कि ये ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको आपका हक नहीं दिया जा रहा है, तब आपके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे नाविनी जी, क्या संदेश आप हमारे बुज़ुर्गों को देना चाहेंगे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं?
0: मेरा संदेश रहेगा कि आप चुप मत रहिए, आगे बढ़िए, अपने हक के लिए आप बोलिए। अगर आप पर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो बोलिए, खुश रहिए, अपने आप की मदद कीजिए। पहले अपने आप की मदद करेंगे तो बाद में आप और की मदद कर सकते हैं। ये और हम आपके आभारी हैं, जहाँ पर हैं जैसे हैं हम आभारी हैं। अगर आपने इतने सैक्रिफाइस नहीं किया था, आप हमारे लिए नहीं सोचते तो हम अभी तक
1: हम यहाँ नहीं
0: होते। तो आप अपने आप को प्राउड फील कीजिए कि आप किधर इस देश को ले जा रहे हैं, कैसे कैसे इस देश को तरक्की करा रहे हैं। तो इसलिए ये ठीक नहीं रहता है कि आप दुख में हैं। आप हमें बुरा लगता है कि हम सोचते हैं कि हमारे जो जो जो नीम है वो हिल रहा है,
1: कमज़ोर
0: हो रहा है। तो हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप आगे बढ़िए, हमारा हिम्मत बढ़ाइए और आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिसेज नाविनी रामनियाल जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आज के इस विषय को लेकर आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी। जो कार्य कर रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हम ढेर सारी शुभकामनाएँ देंगे। और यहाँ पर जाते जाते हमारे सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बुज़ुर्ग जो है, जैसे इन्होंने कहा, हमारे समाज की नींव है, तो उनकी रक्षा करना, उनका सम्मान करना, उनसे प्रेम करना, ये कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य का पालन हम सबको करना चाहिए। और जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी प्रोडक्शन टीम को, हमारी टेक्निकल टीम को, जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम को आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। रितेश महाबिया जी का धन्यवाद, कादिया और हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुषा को भी हम धन्यवाद देंगे। आज के लिए बस इतना ही, जल्द आप सभी से फिर मुलाकात होगी। हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार आप सभी को।

0: जहां है सर श्री उसागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई अड्डे के जिम्मेदारानों के साथ एबोला के एक शक की मामले के चलते एक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया। तीन तरह के हालात का तस्वीर किया गया। मंत्री अनिल बिचू ने इस कार्रवाई पर तसल्ली जताते हुए बताया कि मॉरिशस अब एबोला के संदर्भ में किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। रेड क्रॉस के मुताबिक कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एबोला महामारी एक साल तक जारी रह सकती है क्योंकि अभी तक बीमारी पीक पर नहीं चढ़ी है। स्क्रीनिंग की कमी की वजह से ये साफ नहीं है कि इसका फैलाव कोंगो में कितना हो रहा है। अब तक 800 से ज्यादा मामले पाए जा चुके हैं और 192 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। सरकार मॉरिशस में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के सिलसिले में एक ढांचा कायम करने का मकसद रखती है ताकि ऑनलाइन जुर्मों से बचा जा सके। बहुत जल्द सलाह मशवरे किए जाएंगे और यूजरों की पहचान के लिए एक वेरिफिकेशन प्रणाली स्थापित की जाएगी। कैबिनेट में इस परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है। स्कूल के वक्त से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बरतने की अच्छी आदतें अपनाना ये नेशनल वेस्ट पेपर कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग परियोजना का मकसद है। आज सुबह पर्यावरण मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय सहयोग से एसके कान्हाई सरकारी स्कूल में पहल की लॉन्चिंग की। करीब 250 स्कूलों और कॉलेजों में ये परियोजना चलाई जाएगी। बच्चों को अपने कागजात जमा करके रिसाइकलिंग कारखानों में भेजना होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
1: RM3 Radio.

0: के सितारे।
1: सो वेल फ्रेंड्स, आपके सितारे प्रो

0: के सितारे।
1: फ्रेंड्स बात कर रहे हैं आज हम शाहिद कपूर के बारे में और कह सकते हैं कि ये जो हमारा आज का सफ़र है आपके सितारे, इसमें हम इस सितारे को चुनकर लाए हैं जिन्होंने चॉकलेट बॉय से लेकर इंटेंस सुपरस्टार तक का सफ़र तय किया है। द वन एंड ओनली शाहिद कपूर, डांस हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो या फिर पावरफुल एक्टिंग, शाहिद हर रोल में अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं। सो यहाँ पर आपके सितारे प्रोग्राम आज उनके सभी फैंस और डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम, यानी कि हमारे डियर लिसनर्स। सो शामिल होता हुआ एक और प्यारा सा गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, एक ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। मैं हूं परी आपके साथ ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन। एंजॉय दिस वन।

0: के सितारे।
1: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सितारे प्रोग्राम, यहाँ पर आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सरिता जी काटरबोन से कहती हैं कि शाहिद कपूर की फिल्में, उनके गाने बहुत ज़्यादा पसंद है और एक गाना उनके नाम भी ज़रूर होगा। एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक डेडिकेट करेंगे आपके नाम। और वेल, यहाँ पर कहते हैं आज मिथुन दा भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कल आपने आपके सितारे प्रोग्राम सुना होगा तो वो था स्पेशली उनके नाम, और उनके कुछ स्पेशल गाने ज़रूर चलाए थे। यहाँ पर सुमी थी और वो स्पेशल प्रोग्राम उन्होंने किया था आप सभी के लिए। और यहाँ पर विजय जी हमारा साथ दे रहे हैं आप, सो बिल्कुल एक ब्यूटीफुल सा गाना हम आपके नाम भी ज़रूर चलाएंगे। साथ देने के लिए शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम शाहिद कपूर के बारे में, और उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ इन द ईयर 2003। फिल्म का नाम था इश्क विश्क। फिल्म सुपरहिट रही और शाहिद कपूर ओवरनाइट एक यूथ आइकन बन गए। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये क्यूट सा लड़का एक दिन कबीर सिंह और हैदर जैसे कैरेक्टर्स निभाएगा। जैसे हमने कहा कि उनकी जो फिल्में रही, उनकी जो फिल्म जर्नी रही, वो काफ़ी डिफरेंट रही। चॉकलेटी बॉय से लेकर कुछ बहुत ही दमदार किरदार उन्होंने निभाए इन बॉलीवुड। सो आज हम उन्हीं के कुछ फेमस सॉन्ग्स लेकर आए हैं, कुछ फेवरेट सॉन्ग्स जो आपके दिल के हमेशा करीब रहे हैं। सो यहाँ पर फिदा फिल्म का एक गाना डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम, फॉर ऑल द फैंस ऑफ शाहिद कपूर एंड फॉर द ऑल द लिसनर्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन।

तो जी हाँ दोस्तों, इश्क विश्क प्यार व्यार, ये ब्यूटीफुल गाना आप सभी के नाम। शाहिद कपूर एक ट्रेन्ड डांसर है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ बैकग्राउंड डांसर की। आज भी उन्हें डांस मूव्स, यानी कि उनके जो डांस मूव्स है, उनके फैंस को इम्प्रेस कर देते हैं। और जैसे हमने कहा कि एक से बढ़कर एक फिल्मों में उन्होंने काम किया, जहां पर उनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई, उनके डांसिंग स्किल्स की काफ़ी तारीफ हुई। सो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हीं को ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन। विजया जी, यहाँ पर इश्क विश्क प्यार व्यार का गाना सुनकर आप भी हो गई है हैप्पी हैप्पी। चलिए, सो अगला गाना भी श्योरली आपको हैप्पी फील करवाएगा, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म जर्सी। और मुलाकात होगी इन द सेकेंड आवर। यह है आपके सितारे, मैं हूं परी आपके साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।

0: के सितारे।
1: तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक्टर शाहिद कपूर की। यहाँ पर शाम के 5:06 हो गए हैं ट्यूसडे आफ्टरनून, जहाँ पर आप के लिए लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ शाहिद कपूर। उनकी पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स आपसे हम शेयर कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच इतने प्यार से हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हूँ परी आपके साथ, शाम के 6 तक रहेगा आपका और मेरा साथ। एंड दैट वॉज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म जब वी मेट। और ये जो फिल्म है दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन थी। आदित्य और गीत की कहानी आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। और कहते हैं ना दोस्तों कि यहाँ पर शुरुआत तो हुई थी उनकी एक रोमांटिक फिल्म के साथ, लेकिन उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कई अलग अलग तरह के किरदार निभाए और एक फिल्म ऐसी जहाँ पर उनकी इंटेंस एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और हम बात कर रहे हैं फिल्म कबीर सिंह की।
2: दिल

0: के सितारे।
1: तो जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं आज हम शाहिद कपूर की। क्यूट रोमांटिक हीरो से सीरियस परफॉर्मर तक का उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन शाहिद ने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया।

फिल्म कमीने ने शाहिद कपूर के करियर को एक नया डायरेक्शन दिया. डबल रोल और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ने सबको सरप्राइज कर दिया. कहते हैं ना दोस्तों कि हर सक्सेसफुल एक्टर के करियर में कुछ टर्निंग पॉइंट जरूर होते हैं, और शाहिद कपूर के करियर में कमीने, हैदर एंड कबीर सिंह जैसी फिल्में रही उनके करियर के माइलस्टोन्स. सभी के लिए उसी फिल्म का ये गाना जहां पर उनकी दमदार एक्टिंग ने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया. और इससे पहले अगर उनके करियर की बात करें तो जो उनका सफर था वो कुछ ठीक नहीं चल रहा था. एक के बाद एक फिल्में उनकी फ्लॉप हो रही थी और उन्हें बेसब्री से इंतजार था एक सुपरहिट फिल्म का. सुपरहिट क्या, ब्लॉकबस्टर मिल गई उनको इसी फिल्म के साथ, एंड दैट्स कबीर सिंह. तो चलिए अभी के लिए कबीर का ये किरदार जो बाखूबी निभाया शाहिद कपूर ने. दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द फैंस एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: तो यहाँ पर एक और फिल्म जहाँ पर उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया और हर किसी को लगा कि भाई अगर शादी करनी है तो लड़का हो तो बिल्कुल ऐसा ही हो। इस किरदार को हमने देखा उनकी फिल्म विवाह में, जहाँ पर उनके साथ नजर आई अमृता राव। उनके साथ उनकी जो पैर है वो भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की और अभी के लिए यही गाना मिलन अभी आधा अधूरा है आपके लिए हम लेकर आए हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग और फ्रॉम द फिल्म विवाह। ये गाना शाहिद कपूर के सभी फैंस के लिए और सभी हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, ब्यूटीफुल ट्रैक आपके दिल को लुभाने के लिए। उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज है। विजया जी, यहाँ पर शायद आपकी हमारी पसंद एकदम मिलती है। शाहिद कपूर के कुछ बहुत ही प्यारे गाने आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। एंजॉय दिस वन, परी का साथ ऑन रेडियो मनोरंजन।
2: कुछ

And well, जैसे हम कहते हैं कि जो फिल्में होती हैं वो काफ़ी इंस्पायर करती है हमारी लव लाइफ को भी. कभी कभार किसी कपल को देखकर लगता है कि काश अगर रिश्ता बने तो ऐसा ही बने. सो जैसे हमने कहा कि अमृता राव एंड शाहिद कपूर की ब्यूटीफुल केमिस्ट्री जो उनकी पहली फिल्म से देखने को मिली, विवाह फिल्म में उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया. एंड वी हैव अ मंशी, दैट्स योर फेवरेट सॉन्ग. विवाह फिल्म का ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम एंड गोज आउट फॉर यू हर्ष एज वेल, सभी पटेल परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. RN3 रेडियो मनोरंजन, आपका स्वागत. एंजॉय दिस वन.

0: आपके सितारे।
1: और जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक्टर शाहिद कपूर के बारे में और कबीर सिंह एंड ये जो गाना अभी आपने सुना जब वी मेट अ फिल्म का। ये दोनों फिल्में उनकी करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से कुछ खास फिल्में बनी और बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। ये थी वो दो खास फिल्में। कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलता, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क भी उतना ही जरूरी होता है। शाहिद कपूर इसका परफेक्ट एग्जांपल है। फैमिली मैन, फिटनेस एंथुजियास्ट और वर्सटाइल एक्टर, शाहिद कपूर की पर्सनालिटी के ये कुछ शेड्स हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि शाहिद कपूर की जो जर्नी है वो हमें सिखाती है कि ग्रोथ तभी होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। हर नया चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है और ये तो हमने सीखा है शाहिद कपूर और उनकी जर्नी के साथ।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए दोस्तों, इसी के साथ शाहिद कपूर स्पेशल का सफ़र यहीं समाप्त होता है. उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा उनके गानों को, उनकी जर्नी को और उनसे जुड़ी इन खास बातों को. याद रखिए, ज़िंदगी में टैलेंट आपको शुरुआत देता है लेकिन डेडिकेशन आपको मंजिल तक पहुंचा देता है. एंड परफेक्ट एग्जाम्पल दैट्स शाहिद कपूर. सो वेल दोस्तों, अभी के लिए इट्स टाइम कि मैं परी लूँ आपसे इजाज़त और आपसे मुलाकात होगी कल यहीं पर, जहाँ पर लेकर आएंगे प्रोग्राम नई सोच आपके लिए. तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन. मुलाकात होती रहेगी और ये प्यारा सा गाना आप सभी के नाम. थैंक यू सो मच इतने प्यार से हमारा साथ देने के लिए. एंजॉय दिस वन.

0: नमस्कार आदाब 6 बज रहे हैं पेश है समाचार बुलेटिन खुशामदीद सबसे पहले आज की बड़ी खबरें मुर्शिद सब एबोला के संदर्भ में किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं कहा मंत्री अनिल बिचू ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य खतरों के चलते मुर्शिद अपनी निगरानी और मजबूत कर रहा है इसीलिए हवाई अड्डे पर एक कार्रवाई चलाई गई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने ऐलान किया कि कांडस के विक्टोरिया अस्पताल में एक नर्स को सस्पेंड किया गया सोशल मीडिया पर वीडियो के आम होने के बाद फौरन मंत्रालय ने ये फैसला लिया है एक जाँच शुरू। आज सुबह से पुराने वित्त मंत्री रंगाना दिन पर्याची और पुराने श्रम मंत्री सुदेश कालीचरण रिजवी के ट्रायंगल स्क्वायर में हैं फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की तहकीकात के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जा रही है। और ईरान तथा अमेरिका के बीच सुलह 109 दिनों की जंग के बाद आखिरकार दुनियावी भलाई और आपसी अमन की खातिर दोनों मुल्कों ने जंग बंदी पर मंजूरी जताई है समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दस्तखत किए गए। नमस्कार और आदाब सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य खतरों के चलते मुर्शिद अपनी निगरानी और मजबूत कर रहा है सर शिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई अड्डे के जिम्मेदारानों के साथ एबोला के एक शक्की मामले के चलते एक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया तीन तरह की हालतों का तस्वीर किया गया। मंत्री अनिल बिचू ने इस कार्रवाई पर तसल्ली जताते हुए बताया कि मॉरिशस अब एबोला के सिलसिले में किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। क्लूडेड जोफागा देवादू रजनी बेकर।
1: एक पहला सिनेरियो कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य से आने वाले एक यात्री इन पर विमान में ही एबोला महामारी के लक्षण पाए गए क्रू सदस्यों की ओर से विमान के उतरने से पहले सैनिटरी अधिकारियों को सचेत किया गया मामले को संभालने से संबंधित प्रोटोकॉल चालू विमान के नजदीक आने पर मरीज और उसके आसपास बैठे यात्रियों को अलग रखा जाता है आइसोलेट किया जाता है मरीज को इलाज के लिए सुल्याक अस्पताल ले जाया गया और बाकी के लोगों को रियोबेल क्वारंटीन केंद्र की ओर। एक दूसरा सिनेरियो हवाई अड्डे में सैनिटरी कंट्रोल के दौरान एक अन्य खतरे वाले देश से एक यात्री में बुखार के लक्षण उन्हें शीघ्रतापूर्वक एक अनुकूल स्थल की ओर रवाना कर दिया गया जबकि अधिकारियों की तरफ से महामारी विज्ञान संबंधी जांच के लिए जरूरी जानकारियां एकत्र की जा रही है। एक तीसरे मामले का सिनेरियो यात्री को पहचाना गया जो हाल में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य से ट्रांजिट होकर आया लक्षणों की अनुपस्थिति के बावजूद सैनिटरी टीमों ने खतरों का मूल्यांकन किया और फॉलोअप के कदम लागू किए गए। मॉरिशस में एबोला का कोई भी मामला नहीं है फिर भी अधिकारियों की तरफ से ये याद दिलाया जाता है कि देश की सैनिटरी सुरक्षा में तैयारी अहम मुद्दा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने कहा ये तीन सिनेरियो रहे हैं

0: ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो भी बन पड़े कर सके, ताकि मॉरिशस में ये बीमारी न हो। जनता को आश्वासन देना चाहेंगे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी। जैसे ही इस तरह के मामले पेश आए, शीघ्रतापूर्वक कदम उठाने चाहिए। नर्स हो, अफसर हो, चाहे मामले न भी हो, फिर भी वे स्टैंड बाय पर हैं, तैयार है।
1: Infirmier, officier, même qui prennent la caisse là, nous finissons mettez stand-by. Nous pas pour entendre qu'il gagne, gagne, caisse là, nous vous galopez, non.
0: इस कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, हवाई अड्डे के अधिकारियों, आपातकालीन टीमों और अन्य संबंधित पार्टनरों को भी तैनात किया गया।
2: और रेड क्रॉस के मुताबिक कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बोला महामारी एक साल तक जारी रह सकती है, क्योंकि अभी तक बीमारी पीक पर नहीं चढ़ी है। स्क्रीनिंग की कमी की वजह से ये साफ नहीं है किसका फैलाव कितना हो रहा है। अब तक 800 से ज्यादा मामले पाए जा चुके हैं और 192 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। रजनी बेकर।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी उत्तर पूर्व में कुछ नए इलाकों में फैल रही है। अभी तक जिस तरह का अनुमान लगाया गया था, ये इससे भी ज्यादा है। WHO के मुताबिक इस वायरस को अधिक फैलने से रोकने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। कोंगो अधिकारियों ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं जिनसे पता चलता है कि अब तक 808 मामले दर्ज किए गए हैं और 192 लोगों की मौत हुई है। लेकिन मेडिसिन सान फ्रांसिस के अनुसार ये औपचारिक आंकड़े हकीकत बयान नहीं करते। रेडक्रॉस के अनुसार महामारी और एक वर्ष तक बरकरार रह सकती है और इसे नियंत्रित करने के वास्ते सैनिटरी कार्रवाई में निवेश करना होगा और साथ में लोगों में तथा स्थानीय स्वयंसेवकों में भी भरोसा लाने में। चाहे अभी के लिए मौजूदा महामारी के स्रोत के बारे में किसी तरह का इलाज नहीं मिला है या फिर टीका नहीं मिला है, फिर भी युगांडा के वैज्ञानिक टीके को विकसित करने और इससे संबंधित अनुसंधान में तेजी ला रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि एक कारगर वैक्सीन विकसित कर सके।
2: मकामी स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने ऐलान किया कि कोंडोस के विक्टोरिया अस्पताल में एक नर्स को सस्पेंड किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के आम होने के बाद फौरन मंत्रालय ने यह फैसला लिया। वीडियो में मेडिकल स्टाफ को एक गैर मुनासिब हालत में दिखाया जा रहा है। फेसबुक पर एक पोस्ट में मंत्री बिचू ने बताया कि उन्होंने फौरी तौर पर एक जाँच शुरू करने का हुक्म दिया। मुख्तलिफ टकों के स्टाफ से भी तहकीकात जारी है। मंत्री अनिल बिचू के मुताबिक जो ही जरूरी सबूत मिले डिसिप्लिनरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जांच में देरी ना करने का आदेश दिया। किसी भी गलती को माफ नहीं किया जाएगा, उन्होंने ऐसा कहा। दूसरी खबरों में हमारी सरहदों के परे काबिलियतों की तलाश में आज हमारी मोशन कंपनियों को इनकी बड़ी ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी, अनुसंधान, विकास और चिकित्सक टेक्नोलॉजियों के सेक्टरों में काबिल संसाधनों की आवश्यकता है। लेकिन क्या देश में काबिल नौजवानों की ट्रेनिंग कम है? क्या काबिल पेशेवर काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं या उभरते सेक्टरों को तरक्की की राह पर गामजन करते करते चुनौतियाँ प्राप्त हो रही हैं? शहजाद जुर्मान ने पता लगाया। अशिता रघु का विवरण पेश है।
3: एबेन में स्थित अस्टेक मॉरिशस लिमिटेड में डेवलपर्स, डेटा विशेषज्ञों और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों समेत कई पेशेवर कार्यरत हैं। कंपनी के लिए आवश्यक कौशल वाले कर्मचारियों की उपलब्धता उसके विकास के लिए एक अहम शर्त है। AI में हो रही विकास के मद्देनजर हमें डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, AI इंजीनियरों, AI ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट इत्यादि को भर्ती करने की आवश्यकता है और इन स्थानीय कौशलों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। जो भी कंपनियां जल्द विकास करना चाहती हैं, उन्हें शुरुआत में विदेशी विशेषज्ञताओं पर निर्भर होना पड़ता है।
4: Donc il faut dépendre dans un premier temps sur certaines expertises étrangères.
3: लेकिन विशेष कौशल की मांग केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र तक सीमित नहीं, मेडिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी इसकी चुनौती महसूस हो रही है। हम विकास अनुसंधान क्षेत्र में लोगों को भर्ती करते हैं जिनमें क्वालिटी इंजीनियर्स, रेगुलेटरी इंजीनियर्स इत्यादि शामिल हैं और ये हम बाहर देशों से करते हैं जहाँ उच्च कौशल वाले उम्मीदवार होते हैं। उदाहरण के लिए विकास अनुसंधान के लिए हम उन इंजीनियरों की तलाश करते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक अनुभव है, जो यहाँ कर स्थानीय इंजीनियरों के साथ आदान प्रदान कर सके।
5: Qu'on puisse faire venir ici et ils font des échanges, on va dire, avec nos ingénieurs locaux.
3: विशेषज्ञों के अनुसार ये स्थिति काफी जटिल है। कई क्षेत्रों में कुछ विशेष कौशलों की मांग उपलब्ध मानव संसाधन से कहीं अधिक है। इसके साथ ही प्रतिभाशाली कर्मचारियों को बनाए रखना भी एक

0: बड़ी चुनौती बन गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल हम 800 से 1000 नौकरियों के लिए लोगों को भर्ती करते हैं जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी इत्यादि शामिल हैं। ये मांग बढ़ती जा रही है पर मुश्किल ये है कि स्थानीय स्तर पर कौशल की कमी या फिर यहाँ से कौशल बाहर जा रहे
1: हैं। C'est le brain drain. Donc les talents locaux

0: अपनी विकास यात्रा को जारी रखने के लिए कई कंपनियों के लिए अब देश की सीमाओं से बाहर प्रतिभाओं की तलाश करना एक आवश्यकता बन गया है। ये स्थिति तब तक बनी रहने की संभावना है जब तक नियोक्ताओं द्वारा मांगे जा रहे कौशलों में स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध नहीं हो जाते।
1: आज सुबह से पुराने वित्त मंत्री रंगना देन पर्याची और पुराने श्रम मंत्री सुरेश कालीचरण रिजवी के ट्रायंगल स्क्वायर में हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की तहकीकात के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जा रही है। सन 2023 में मैरिटाइम मर्केंटाइल इंटरनेशनल सोसाइटी से ईंधन की खरीद के ठेके के सिलसिले में दोनों से जांच की जा रही है। वकील रऊफ गुलबुल, रोशन संतोखी और वकील नीलकांत दलू दोनों पूर्व मंत्रियों की वकालत कर रहे हैं। सरकार मुशरस में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के सिलसिले में एक ढांचा कायम करने का मकसद रखती है ताकि ऑनलाइन जुर्मों से बचा जा सके। बहुत जल्द सलाह मशवरे किए जाएंगे और यूजरों की पहचान के लिए एक वेरिफिकेशन प्रणाली स्थापित की जाएगी। कैबिनेट में इस परियोजना के लिए मंजूरी भी दी गई है। ईरान और अमेरिका के बीच सुलह 109 दिनों की जंग के बाद आखिरकार दुनियावी भलाई और आपसी अमन की खातिर दोनों मुल्कों ने जंगबंदी पर मंजूरी जताई है। इस शुक्रवार से आबी रहगुजर आबनाए हुरमुज को दोबारा खोला जाएगा जहां से सभी कश्तियां गुजर सकेंगी। समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दस्तखत किए जाएंगे। उधर ग्रेट ब्रिटेन ने 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। ये सुरक्षा के तौर पर यानी ये कदम उठाया गया है। उधर अमेरिका एयरफोर्स बम्ब दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। इनमें बोइंग के 2 कर्मचारी भी शामिल थे। स्कूल के वक्त से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बरतने की अच्छी आदतें अपनाना ये नेशनल वेस्ट पेपर कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग परियोजना का मकसद है। आज सुबह पर्यावरण मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से एसके कान्हाई सरकारी स्कूल में पहल की लॉन्चिंग की। करीब 250 स्कूलों और कॉलेजों में ये परियोजना चलाई जाएगी। तलबा को कागजात अलग रख कर रिसाइकलिंग के लिए भेजना पड़ेगा। नगर पालिकाओं के नए मुंतखब मेयरों और डिप्टी मेयरों के साथ आज मकामी इंतजामिया मंत्री रंजीव उचित ने एक खास मुलाकात की। शहरों के हालात, शहरियों की सहूलतों और दीगर परियोजनाओं पर गौर किया गया। नए जिम्मेदारानों ने अपने अपने मकसदों और कामों पर रोशनी डाली। साथ में संचालन में पेश मुश्किलात का मुद्दा भी उठाया। अफ्रीकी बाल के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में कई गतिविधियों की लॉन्चिंग भी की जा रही है। अशिता रघु की रिपोर्ट पेश है।
2: इस अवसर पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने स्वयं एक प्रदर्शनी प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में उन्हें जल और जल का दैनिक जीवन में उसके महत्व को समझाने का अवसर दिया। इस दिवस का महत्व ये है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ है हमारे लिए जो बहुत खूबसूरत है। बारिश का पानी जमा करके घरेलू काम के लिए उपयोग करना चाहिए। हमारे इस परियोजना का लक्ष्य है कि जिन लोगों का स्वच्छ पानी तक पहुंच है वे कौन से कदम उठा सकते हैं उन लोगों के लिए जिनकी पहुंच पानी तक नहीं है। संदेश स्पष्ट है, पानी हर किसी से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक संसाधन से कहीं बढ़कर ये बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये पहल बच्चों को कम उम्र से ही पर्यावरणीय चुनौतियों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक एवं सहभागी बनाने का प्रयास है। बच्चों के लिए जरूरी है कि उनकी पहुँच पानी तक हो, वरना वे वंचित हो जाते हैं। यदि मॉरिशस में स्थिति को सही से संभाला जाए तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ये संदेश सरकारी अधिकारियों द्वारा भी साझा किया गया। लैंगिक समानता मंत्रालय ने भी दोहराया कि स्वच्छ जल तक हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है। यदि पानी से बच्चों को वंचित रखा जाए तो इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। जब खराब मौसम के कारण स्कूल नहीं जाते हैं ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रदर्शनी और अपने विचारों के माध्यम से इन बच्चों ने एक सरल

0: लेकिन महत्वपूर्ण संदेश दिया। जल संरक्षण हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। ये जागरूकता अफ्रीकी बाल विकास की भावना को पूर्ण रूप से दर्शाती है और नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण तथा बेहतर भविष्य के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है।
1: आपको बता दें कि अभी अभी जुमा मस्जिद की तरफ से एक ऐलान है, मुर्शस और रोड्रिग्स में नया चांद नज़र आ गया है, इसलिए कल 17 जून को मुहर्रम 1448 की पहली तारीख होगी, यानी नया इस्लामी साल शुरू होगा, और यौम आशुरा जुम्मा 26 जून को होगा। ये कम्युनिके, ये विज्ञप्ति मुर्शस और रोड्रिग्स के लिए है। मुर्शस मराठी मंडली फेडरेशन की नई प्रशासनिक परिषद ने प्रेस को संबोधित किया। इस पेशकश के दौरान नए मेंबरानों ने आने वाले 2 सालों के लिए अपने अपने लक्ष्य आम किए। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहली बार स्लोवाकिया के दौरे पर गए। फ्रांस में फलदार मुलाकातों के बाद उन्होंने भारत और स्लोवाकिया के रिश्तों को रोज देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में ये विशेष दौरा शुरू किया। स्लोवाकियन राज्य की तरफ से उन्हें वहां का सबसे इम्तियाज एजाज यानी सर्वोच्चतम उपाधि ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया। और अब फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की बात करते हैं। कल इजिप्ट और बेल्जियम के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ, मैच ड्रो रहा और स्कोर 1-1 रहा है। अरविंद बिसेसाओ से ज्यादा जानकारी।
2: यूरोप की चैंपियन टीम को रोका पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रही केप वर्दे की टीम ने। लाहोगा यानी स्पेन की टीम ने खेल की शुरुआती मिनटों में ही अपना दबदबा बना लिया था और लगातार हमले किए, लेकिन केप वर्दे की टीम की रक्षा पंक्ति यानी डिफेंस को तोड़ने में नाकाम रही। गोलकीपर वो जिन्हा ने शानदार खेल दिखाया। वो जिन्हा ने लामिन यमाल और पेद्री की कई कोशिशों को नाकाम करते हुए बेहतरीन बचाव किए, उसे मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। आखिरी 15 मिनटों में स्पेन के भारी दबाव के बावजूद स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ। स्पेन की टीम अब भारी दबाव के साथ अपने अगले मैच में उतरेगी। स्पेन का मुकाबला आने वाले 21 जून को सऊदी अरब से होगा। दूसरी ओर केप वर्दे विश्व कप में अपने ऐतिहासिक सफर को जारी रखते हुए अगले दिन यूरुग्वे से भिड़ेगा। बेल्जियम और इजिप्ट के बीच मैच में भी ऐसा ही मुकाबला देखने को मिला, जो 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। इजिप्ट ने 19वें मिनट में ही बढ़त बना ली जब इमाम अशूर को पेनाल्टी बॉक्स के अंदर एक बेहतरीन पास मिला और उसने बिना कोई गलती किए गोल दाग दिया। बेल्जियम ने धीरे धीरे मैच पर अपनी पकड़ बनाई और दूसरे हाफ में इसका फायदा मिला जब रोमेलू लुकाकू के दबाव में इजिप्ट के मोहम्मद हानी ने आत्मघाती गोल यानी ऑन गोल कर दिया। मैच का आखिरी समय काफी रोमांचक रहा, जिसमें दोनों ही टीमों को गोल करने के कई अच्छे मौके मिले, पर फाइनल बेल्जियम 1-1।
1: राज ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मैच रहा, दोनों का स्कोर 2-2 रहा, यानी मैच ड्रो गया, जबकि सऊदी अरब और यूरुग्वे के बीच भी मैच ड्रो रहा और स्कोर 1-1 रहा। आज रात फ्रांस और सेनेगल के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, रात के 11 बजे। अरविंद बिसेसाओ।
2: पिछले वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट फ्रांस की टीम अपने रुतबे को बचाने और मैच की रफ्तार को काबू में रखने के इरादे से सेनेगल के खिलाफ मैदान में उतर रही है। ले ब्लू एक बेहतरीन तालमेल वाले खिलाड़ियों का समूह है और गेंद वापस मिलते ही बहुत तेजी से आगे बढ़ने की काबिलियत के साथ आ रही है, लेकिन यह मुकाबला लाजमी तौर पर एक पुरानी और यादगार याद को ताज़ा कर देता है। साल 2002 के विश्व कप में सेनेगल ने इतिहास रचते हुए विश्व चैंपियन फ्रांस को हराया था। तब से अब तक खेल के तौर तरीके बदल चुके हैं, लेकिन हालात अब भी चुनौतीपूर्ण हैं। सेनेगल के पास आज भी वही शारीरिक ताकत, खेल में तेजी, आमने सामने के मुकाबलों में आक्रामकता और जवाबी हमले यानी काउंटर अटैक में खतरनाक होने की खूबी मौजूद है। ग्रुप जे में अर्जेंटीना का सामना अल्जीरिया से होने जा रहा है, जो कि एक बेहद तकनीकी लेकिन उतनी ही कड़ी टक्कर वाला मुकाबला है। आलबी सेलेस्ते की टीम

0: अपने तजुर्बे खेल के कमजोर पलों में संभालने और समझ और विरोधी टीम के गोल पोस्ट के पास बेजोड़ फिनिश के साथ आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ डिफेनेक्स यानी अल्जीरिया की टीम रफ्तार, खेल की तेजी और गेंद मिलते ही फौरन हमला करने की अपनी ताकत पर भरोसा कर रही है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती पूरे 90 मिनट तक अपना ध्यान बनाए रखने की होगी ताकि अर्जेंटीना जैसी टीम को थोड़ा भी खाली मौका न मिले, क्योंकि अर्जेंटीना हर छोटी सी गलती की बड़ी सजा देती है। आखिरकार डिफेंडिंग चैंपियन जो है।
1: आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है और आज रात से कुछ बादल घेर आएंगे जो स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात के दौरान घने बादल होंगे, पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में बारिश होगी। कल बादल घिराएंगे, पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कल बारिश की वजह से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं और लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है, खासतौर पर पश्चिम और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान, सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 23 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:43 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:38 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें आप तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारी तकनीकी साथी शिवनाग्या की मदद मिली है आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें दीजिए इजाजत नमस्कार और आदाब शोक समाचार सुनिए
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

शोक समाचार सुनिए. जंबो रोड शुमें ग्रोनी में, जंबो रोड शुमें ग्रोनी में 77 साल के 77 years old श्री सित्यानन गिरिया, श्री सित्यानन गिरिया जो आत्मानंद के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल एक बजे इनकी पत्नी सरस येरिया के घर जंबो रोड शुमैग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शुमैग्रोनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. रॉयल रोड बुबासेमी 65 साल के 65 years old श्री हेमराज जोगू जो बाबू कॉन्ट्रैक्टर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और नंबर 27 डॉक्टर पेपन स्ट्रीट बुबासन के रहने वाले थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल सवा बारह बजे एलियनसन बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1:15 PM. मोसेल मोंगोय बेले रिवे सेश में 79 साल की 79 years old श्रीमती तारामती मुखलाल पैदाइशी नाम रामलोचन जो बिंदु के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल एक बजे इनके बेटे धनराज मुखलाल के घर मोसेल मोंगोय बेले रिवे सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालूसी बिल्डिंग बेले रिवे सेश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. कैथर कारो ओकुले में 59 साल की 59 years old श्रीमती कुमारी सलोनी हनु नियोन पैदाइशी नाम बुधन जो सलोनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं. अर्थे कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके घर कैथर कारो ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ली जाएगी. Cremation tomorrow at 9:30 AM.

0: बसन रोड 52 में 71 साल की 71 years old श्रीमती लक्ष्मी परियानन श्रीमती लक्ष्मी परियानन पैदाइशी नाम गोइंदन जो राधा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल दो बजे के घर बासन रोड कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM NHDC ग्रैंड बुआ में 74 साल की 74 years old मोहतरमा अफरोजा लुत्फन जो जुबैद के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं जनाजा कल दोपहर बाद एक बजे इनके घर NHDC ग्रैंड बुआ से उठाकर दफनाने के लिए तुम्बो में बग का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुमारो एट 1 PM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2,

नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। 6:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम खासकर ओएम फ्री पर। ये खूबसूरत कार्यक्रम आप लोगों के नाम, जहाँ 30 मिनट का प्रोग्राम है जहाँ पर आप सुनेंगे बस खूबसूरत गाने, भावगीत, फिलोसॉफिकल सॉन्ग जो आप लोगों के लिए हमने तैयार किया, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। पूरे दिन की थकान हम दूर करते हैं और वो भी गाने के साथ।

0: RM3 Radio. Radio. Radio. Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
4: रात के 7 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ RM3 रेडियो, और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए मैं हूँ शक, और यहाँ पर जी हाँ 9 बजे तक हम साथ देंगे, और उम्मीद है कि आप लोग भी साथ देंगे और इस प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाएंगे। जी हाँ, नंबर है 5250620200, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं 4028070। 80s और 90s के खूबसूरत तराने आप लोगों के नाम हम पेश करते हैं, और आज का ये पहला गाना सैनिक फिल्म से लिया गया, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ों में। और ये गाना जाएगा उन तमाम लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को बेहद पसंद करते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए एंजॉय कीजिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: की आवाज 7:14 हुए हैं और आज की पहली फरमाइश चलिए सुदेवी जी के लिए गाना जाएगा और वो रहती है वाक्वा और इस समय हमें सुन रही हैं गाना वो खास मांग रही हैं ट्रियोले के रहने वाली दीदी ललिता कुशल फैमिली आत्माराम भैया मालेंगा के अनुषा किरण कृष्ण कृषय राम रतन फैमिली और पूरे टीम के लिए हमारे टीम के लिए थैंक यू सो मच आपको चलिए सतरंज फिल्म से दिया गया ये प्यारा गाना कुमार सानू और एक बार फिर से सादा सरगम की आवाज़ों में

0: You're listening RM Free Radio. Radio. दिलों की आवाज,
1: सात बजकर 27 मिनट हुए हैं और यहाँ पर आप सुन रहे थे सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में ये गाना। जी हाँ, और चलिए बादल फिल्म से लिया गया। यहाँ पर मेहरबान फिल्म का अगला गाना हम चलाएंगे, खासकर नंदिनी जी के लिए जो हमें सुन रही है इस समय।

0: You're listening RM Free Radio. Radio. दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: कहते हैं प्यार का एहसास लफ्जों में बयां करना मुश्किल होता है। ये वो खूबसूरत जज्बात जो किसी की मौजूदगी से दिल को सुकून देता है और उसकी मुस्कुराहट दिल को रोशन कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जुड़े हुए हैं RM Free रेडियो के साथ, रेडियो मनोरंजन, और आप इस समय हमें सुन रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपको। और चलिए 7:45 हुए हैं और इस खूबसूरत कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं। याद दिला दें, नंबर है 4028085, जी नहीं 4028।

8070 और मैसेजेस आप भेज रहे हैं ऑन 5250 6200। और यहाँ पर हम लाइव टिकटॉक भी कर रहे हैं और आप जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो है संगीता सुकाही, नमस्ते आपको। और आप हैं दिनेश गोपी, हमारी प्यारी परी जी भी हैं, अर्जुन है, लीना और साथ में अनुष्का, धन्यवाद आपको। अजमेर खान, आपके लिए भी गाना जाएगा। और सरामा, चलिए लकी अली की आवाज़ में ये प्यारा गाना।

0: You're listening RM Free Radio. Radio. दिलों की आवाज की आवाज
1: 7:42 हुए हैं और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम। ये खूबसूरत प्रोग्राम आपके नाम और यहाँ पर बहुत सारा प्यार हमको मिल रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स की ओर से, क्योंकि उनको ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद है। जुड़ चुकी है रिया, जो इस समय हमें सुन रही है। नमस्ते आपको। और आप है जय और लीना, जो गाना मांग रही है अपने पति कृष्णा के लिए। जी हाँ, माधुरी जी है, अजमिया है। जैसे कि हमने आप लोगों को कहा है कि हम लाइव टिकटॉक भी कर रहे हैं। और यहाँ पर फ्रॉम फ्रांस प्रेमिला जी हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच। नीरम है और रोहित है फ्रॉम सूरीनाम। नीरम गाना मांग रही है खुद के लिए और साथ ही साथ में उत्तम जी है, नमस्ते आपको। और कौटिक सुबिता, आपके नाम ये गाना जाएगा। और साथ में सूरज जी है, जो सूरज सजादा जो रहते हैं थ्रियोले और इस समय हमें सुन रहे हैं। और गाना खासकर वो मांग रहे हैं अपने बेटे निशाल। और हमेशा की तरह हमको नहीं भूलते हैं, हमारी पूरे रेडियो मनोरंजन टीम के नाम भी ये गाना जाएगा।

0: You're listening RM Free Radio. Radio. दिलों की आवाज, दिलों की आवाज.
1: दिलों की आवाज़ प्रोग्राम 7:50 और यहाँ पर अगला गाना मस्ती फिल्म से लिया गया, खासकर जय जुंधु जी के लिए उनकी प्यारी पत्नी की ओर से. मालिका है, जी हाँ, आपको नमस्ते. तेज सुनाटन जी है, अमीर है, विमल तपसी जो हमें सुन रहे हैं, धन्यवाद आपको. और गाना वो मांग रहे हैं बेटी नाविया के लिए, नाविया तपसी हिनल, वाओ. और कुलदीप बोईजू हैं जो हमें सुन रहे हैं, चलिए आपका गाना हम बाद में चलाएंगे. निवेद, चलिए धन्यवाद आपको जो आप जुड़ चुके हैं इस लाइव में. और हमें जो लोग सुन रहे हैं रेडियो पर, उनके लिए भी गाना हम चलाएंगे. आफिजा गाना मांग रही है साइलेश के नाम. और अंतिशा भी है, अंतिशा गाना मांग रही है अपने लिए. और साथ ही साथ में विनेश वेंकिया है, सत श्री अकाल. ओ माय गॉड, सत श्री अकाल आपको. चलिए गाना जाएगा आपके लिए. और अंजलि चेतिया, आपके नाम जाएगा आश्रुपल. और कुलदीप बोईजू है जो गाना मांग रही है नंदिशा, अपनी पत्नी नंदिशा के लिए. दिल दे दिया है, जा दे दिया है, अब क्या दे इस प्यार में.

सात बजने को है और आप लोग सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम ऑन रेडियो मनोरंजन जहां आरएम फ्री रेडियो और जो लोग जुड़ चुके हैं उनको हम कहेंगे बहुत धन्यवाद। यहाँ जेट का ये खूबसूरत गाना, जी हाँ, और ये गाना जाएगा खासकर हमारे सभी लिसनर्स के लिए। आश रूपल है जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ज्योति हैं ज्योति लोबिन उनके लिए भी, और साथ में कथीबा मोगोस शैलेंद्र रघुनाथ उनके लिए भी ये गाना। और साथ में जय जी है जो अब गाना मांग रहे हैं अपनी प्यारी पत्नी अंजू के नाम। लवना है और गाना वो मांग रही है विकास बिगू जो रहते हैं फौजी साहब।

चलिए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में ये गाना, और साथ ही साथ में ये गाना जाएगा रजन जी के लिए जो रहते हैं यूएस में और इस समय हमें सुन रहे हैं। हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम कभी मिस नहीं करते हैं, थैंक यू सो मच।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: प्यार कभी बताकर नहीं आता, ये तो अचानक से दिल के किसी कोने में अपनी जगह बना लेते हैं। जिस शख्स को हम कभी सिर्फ एक आम इंसान समझते हैं, वही एक दिन हमारी दुनिया बन जाता है। 8:09 हुए हैं और यहाँ पर ये गाना जो हम चलाने जा रहे हैं, एक खास इंसान के लिए, एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड के लिए, जी हाँ, उनके नाम गाना चलाएंगे। और साथ ही साथ में बिस्वानी जुमन है जो हमें सुन रही हैं, उनके लिए गाना जाएगा। और साथ में

रामभाजी हैं जो हमें सुन रही हैं इस समय और गाना वो मांग रही हैं पीटिया और भीका फैमिली जो रहते हैं लेस कालिए और विल्नुआ

0: हमें सुन रही हैं फ्रॉम पिचित हाफरे, गाना वो मांग रही हैं मामा आशा और फकीर के लिए। और कतुना किरण है जो हमें सुन रही है फ्रॉम मुका। चले ताल फिल्म से लिया गया ये टाइटल सॉन्ग, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में।
1: तनक दिन दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक दिन तनक

0: You're listening RM Free Radio. Radio. दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: बजकर 17 मिनट हुए हैं और ताल से ताल मिलाएंगे, सुर से सुर मिलाएंगे ज़रूर आप जो साथ दे रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। याद दिला दे, नंबर है 5250620 आप में सजेस्ट कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं ऑन 4028070। और ज़्यादातर लोग हमको लाइव टिकटॉक पर देखते हैं तो उनको हम कहेंगे तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर असगर अली है जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम जर्मनी। और आप हैं और जय प्रताप जी, हाँ वो हमें सुन रहे हैं इस समय और गाना खासकर वो मांग रहे हैं रेहाना, संगीता, आशा और डॉक्टर अंजू के लिए। और आरती राम सहाय है, आपके लिए भी गाना जाएगा। और साथ ही साथ में दनी जगरू है जो सुन रहे हैं गुड लेंस से, थैंक यू सो मच। और आप हैं कमला जी, हाँ कमला जी, चले गाना चलाएंगे बर्थडे का, लेकिन पता नहीं, लेकिन अभी का जो है हम ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे आपको और गाना खास कर श्वेता महादेव के लिए उनकी मौसी की तरफ से। चलिए हमारी तरफ से भी उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और शैलेंद्र जी हैं जो गाना मांग रहे हैं अपनी प्यारी पत्नी प्रीति के नाम, और ये गाना खास कर जय के नाम अंजाम फिल्म से लिया गया।

0: RM3 Radio. Radio.
1: फिल्म का नाम है तेजाब और ये गाना जाएगा खासकर माधुरी जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं इस समय और गाना खासकर उनके नाम जाएगा और साथ ही साथ में यहाँ पर सीमा के लिए किरण है जो हमें सुन रहे हैं और हमारी प्यारी और जगी निशा है जो जुड़ चुकी है उनके लिए भी गाना हम चलाएंगे ज़रूर माला जरी है

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए, फिल्म का नाम है जिद्दी और आवाज हम सुनेंगे हरिहरन और चित्रा की, और गाना खासकर वशिष्ठ, जी हाँ, वशिष्ठ जगन्नाथ के लिए जो हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, उनके नाम ये गाना जाएगा। और साथ में हमें सुन रही हैं प्रिया, हाय प्रिया, और खासकर स्वीति के नाम, और यहाँ पर हमें सुन रही हैं इंदिरा लौटन जी, और गाना खासकर वो मांग रही हैं अपने लिए और दीक्षा कृष्णा गोपी के लिए, और सिंह परिवार जो रहते हैं लंदन। और केविन हैं जो सुन रहे हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। गाना वो मांग रहे हैं एंजल के लिए, और यहाँ पर प्रकाशवती हैं, प्रकाशवती और स्थिति, जी हाँ, नाम तो बहुत ही अच्छे हैं, स्थिति और आपके नाम ही ये अगला गाना जाएगा। चलिए, रोमांटिक गाना है इस रोमांटिक मौसम में।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों
1: की आवाज। आज बजकर 40 मिनट हुए हैं और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं दिलवंती सनातन और गाना खास कर वो मांग रहे हैं कयामत से कयामत फिल्म से लिया गया। जी हाँ, ऐ मेरे हमसफर। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गाना है और वैसे ये गाना इस फिल्म में नज़र आए थे आमिर खान और साथ में जूही चावला और मेरे ख्याल से ये दोनों की पहली फिल्म थी और काफ़ी हिट रही और हमें पता है कि कुछ लोग अभी भी ये गाना पसंद करते हैं और साथ में गाना जाएगा शोभा जी के लिए जो हमें सुन रही है इस समय। चलिए आपको भी हम कहेंगे धन्यवाद। कम समय रह गया है इस प्रोग्राम को समाप्त होने में और रियाना जी हाँ वो रहती है फेनिक्स। गाना खासकर वो मांग रही है फोजालीला एंड जियाद।

0: चले फिल्म का नाम है देवदास।
1: ये किसकी है आहट,
0: मार डाला किसने मार डाला
1: है साया।
0: और गाना जाएगा कृष्णा खरका के लिए, नमस्ते आपको, और साथ में अरुण के लिए जो रहते हैं वाक्वा, उनके नाम गाना हम चला रहे हैं। बहुत ही प्यारा गाना, कविता कृष्णमूर्ति और के की आवाज़ों में।

चलिए सरना सरगम की आवाज़ में जानम मेरी जानम, जैसे कि हमने कहा रोमांटिक मौसम है, रोमांटिक गाने हैं और आप भी बहुत ही रोमांटिक हो, और ये गाना जाएगा सुदेश जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं मेबग से, गाना खास कर उनकी प्यारी पत्नी आशा और बहन सुरेखा के लिए, और साथ में जैसे कि हमने कहा धनेश्वरी जो हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच आपके नाम।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का. रात के 9:06 हो गल बा सभी प्यारे साथी लोगन के उषा के सप्रेम नमस्ते स्वीकार करे जा रात्रि के 11 बजे ले हम अभी ले 11 के रात के 11 बजे ले हम साथ देवब जा और उस समय चल तो हर मन पसंद कार्यक्रम भोजपुरी तड़का के कई दोस्त लोगन त बोलेलन कि 9 बजे त मानला ओ लोग के दिल में भोजपुरी तड़का बज गल इतना ही प्रोग्राम के शौकीन हवन जा तो चला नंबर वा मिला ल कत सौदे कत हो वैसा और जी भर के गीतवन के मांग कर जा

0: भोजपुरी तड़का।
1: साथे लोगन तोहरा पता बाते कि सबसे बढ़िया चीज का है जीवन में तोहर प्रति सब कोई अच्छा सोचिया तोहर आधार करिया ऐसन में इज्जत बड़ी और एकर से बड़ा दौलत कोनो नहीं बाते तोह लोग भी सम्मान देवा जा तभी तोहरा सम्मान मिली। कृषि के गावर गीत चला जलसा करे के और तू भी साथ दिया

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 9:26 हो गए बा भोजपुरी तड़का तय धमाकेदार प्रोग्राम हुआ के नाम है तड़का यानी स्पाइस जोन खाना के एकदम मजेदार बना देवेला। वैसे ही प्यारे श्रोतागण बढ़िया बढ़िया गीतवन से सचमुच भोजपुरी हमनी के जिंदगी में तड़का भर देवेलन सा तो चला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तो हर नाम और यहाँ पर ही भवेश के लिए अगला गीत जकर जन्मदिन गत सप्ताह बाते और ढेर सारी शुभकामनाएं पापा विशाल और मामा रीना की ओर से और पूरे परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद तो भवेश
2: हमरो

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 9:42 शोरागन अभी तब फुटबॉल की लहर खूबे उठा था वर्ल्ड कप के समाता सगरो छागल बा जके देख बा तब फुटबॉल के बारे में अपन पसंदीदा टीम पर बात करा था वंजा काहे नहीं संगतिया लोग हर चार बरिस में ए वर्ल्ड कप जे आयोजन होला इस साल तक तीन देश में एकर आयोजन होलबा कनाडा मेक्सिको और यूएसए में आज भुला या नहीं फ्रांस वीएस सेनेगाल के मैच देखे के 11 बजे तैयार हो जाइया और ये गाना अमरीत जी खातिर जो हमने के सुनता मेबग से एकर खातिर और उनकी प्यारी पत्नी

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:53 मिनट हो गए बा श्रोता गण, भोजपुरी भाषा ले ऐसा ऐसा शब्द बा जौन सच्चे तो हर मन के प्रसन्न कर दे वलन सा। जलसा गमत गीत गवाय तरका मजेदार धमाकेदार धमाल आदि आदि शब्द तो हमेशा सुने के मिलेला। बात करे में तो बढ़िया अच्छा लगेला। और यहाँ पर ही संतोष जी जो रहिला फ्लक और इबखत हमने के सुना था एकर खातिर गाना चलावब जा और गाना खास कर मांगा तवन जा अपन बेटे रोनल खातिर और बेटी ऐशा।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 10 बजकर 6 मिनट हो गए बा शुटागन भाई बहन लोगन तोहरा याद बाते जैसे ही जून महीना आरंभ होल ता हम सूचित कर ले रही कि ई महीना के बोली लासा संगीत मास आर्य समाज त सत्यार्थ प्रकाश मास मनावला 21 जून के योगा दिवस भी हा वही दिन 21 जून के पूरे विश्व में संगीत दिवस बरिए जोर शोर से मनावल जाला आप लोग भी याद रखिया ये रविवार के म्यूजिक डे बा तो चला अगला गीत इंद्राणी जी खाते जोन रहिला बुबास है और ये बखत हमने के सुना था तो चला नीरज गुप्त माडू के गावल गीत तो हर खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का में अच्छा अच्छा बात करे के खूबे मन करेला तो लोग अपन हवा जा कुछ अच्छा बातें के हमने के कर्तव्य हमेशा अच्छा सोचा अच्छा बोला और अच्छा सुना जा रात के 10:26 और अगला गीत सुना नोयन के गावल गीत खासकर देव जी खातिर जो रहेला क्यूपिप और बखत हमने के सुनाता धन्यवाद

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या

0: भोजपुरी तड़का
1: श्रोता लोग जितना संगीत के बारे में बात करब जा उतना ही कम बा वैसे तो संगीत गीत कला तो एगो पूजा है भक्ति है ईश्वर के देन है ढेर कोई सोचेला कि गीत गाय के आसान है पर गीत के पीछे जितना मेहनत लगेला एकर वर्णन नहीं सकब सकरे बड़ा बड़ा गायक कलाकार लोगन बोलेलन कि अभी तक ओ लोग बहुत कुछ बा सीखे के एगो पूरी जिंदगी बीत जाला सीखते सीखते संगीत एगो दरिया है ओकर गहराई नापे के एकदम कठिन बा पौने 10 बज कर बा और यहाँ पर ही अंजू जी हैं जोन रहेला रोजिल और ये भक्त हमने के सुनाता तो चला एकर खातिर अगला गीत ललिता पुनीत के गावल गीत

पता चला प्यारे दोस्त लोगन तो हर सुविधा ले के समय आगे बाटे इस सब पल के अपन खुशगवार बनावा संगीत में ध्यान देवा भरोसा रखिया तो हर जीवन स्वर्ग जैसन सुंदर हो जाए तो लोग आसपास के लोगन तोहरा खूबे सारा सराही और तचला संगीत ही जीवन है शुभ रात्रि

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस के प्यारे प्यारे श्रोताओं को नीतुषा का कर्ज और प्रणाम। इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर यादों की दुनिया में आपको आज ले चले हैं। एक ऐसे कलाकार, एक नहीं दो हैं, वे भाई रह चुके हैं और उनका जो संगीत रहा आज भी दिलों को सहला देते हैं, सुकून दिलाते हैं। वो रहे कल्याण जी आनंद जी। जी हाँ, आज क्योंकि उनके अनगिनत गाने हैं, इतने सारे ड्यूएट्स हैं, तो आज जो बेस्ट ड्यूएट्स हैं वो हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। साथ निभाते रहिएगा।

तो कल्याण जी आनंद जी बॉलीवुड के उन महान संगीतकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी मधुर धुनों से हिंदी सिनेमा को अनमोल गीतों का खजाना दिया। जब भी उनके बनाए हुए ड्यूएट सॉन्ग्स की बात होती है तो दिल खुद ब खुद उन सुरीली यादों की दुनिया में खो जाता है जहां प्यार एहसास और संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

कल्याण जी आनंद जी के डुएट गाने सिर्फ दो आवाजों का संगम नहीं थे बल्कि दो दिलों की कहानी बयां करने वाले संगीतमय सफर हुआ करते थे। उन्होंने मोहम्मद रफी, लता जी, किशोर कुमार, आशा भोसले, मुकेश जैसे महान गायकों की आवाजों को अपनी धुनों में इस तरह पिरोया कि हर गीत एक अमर नगमा बन गया।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: यूं ही तुम

फिल्म सफर हो या फिर मुकद्दर का सिकंदर, कल्याण जी आनंद जी ने हर भावना को सुरों में ढलने का हुनर रखा। उनके सबसे लोकप्रिय जुवत्स में वादा कर ले साजना, हाथ की सफाई, बेखुदी में सनम, हसीना मान जाएगी, हम सफर मेरे हम सफर, पूर्णिमा और तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है।

0: वैसे वादा कर ले साजना में लता जी और रफी साहब की आवाजों का जादू ऐसा था कि ये गीत वफादारी और प्रेम का प्रतीक बन गया। वहीं बेखुदी में सनम एक ऐसा रोमांटिक डुएट था जिसमें इश्क की मासूमियत और खुशबू महसूस की जा सकती थी। इन गीतों की खासियत यही थी कि इनमें शोर नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली मिठास थी।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। कल्याण जी आनंद जी की धुनों में भारतीय संगीत की परंपरा और पश्चिमी वाद्य यंत्रों का सुंदर मेल नजर आता था। इसी वजह से उनके ड्यूएट सॉन्ग्स हर उम्र के लोगों को पसंद आते थे और आज भी हैं। उन्होंने कभी गीतों को सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने जज्बातों की जुबान बना दिया।

0: आज भी जब रेडियो पर कल्याण जी आनंद जी के डुएट गीत बजते हैं तो लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। उनकी धुनों में एक ऐसी रूहानी मिठास है जो दिल को सुकून देती है, पुरानी यादों को ताजा करती है और प्यार के खूबसूरत एहसास को फिर से जिंदा करती है।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: कल्याण जी आनंद जी के डुएट सॉन्ग्स हिंदी फिल्म संगीत की वो अनमोल विरासत है जो समय के साथ और भी कीमती होती जा रही है। उनके सुरों की जादू, गायकों की मधुर आवाज और गीतकारों के खूबसूरत बोल मिलकर ऐसे अमर नगमे पैदा कर गए जो आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल की धड़कन बने हुए हैं। उनके डुएट्स हमें याद दिलाते हैं कि असली संगीत वही है जो सालों बाद भी दिल को उतनी ही गहराई से छू सके जितना पहली बार सुनते वक्त छू गया था। प्रणाम, शुभ रात्रि।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो

मेरू खाएगा। मिठू मिया मिर्ची खाएगा।